आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की नौमी है। तदनुसार 30 मई 2026 शनिवार का दिन है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: चार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजीआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में

0: बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय 6:05 हो चुके हैं। आपको बताते हैं आज दिन भर में हमारे कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

अब से कुछ ही समय पश्चात 6:10 का समय होगा चिंतन का। 6:15 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुन पाएंगे आप वंदना। 6:45 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। 7:20 पर आप सुन पाएंगे श्री रामचरितमानस गान। 7:30 का समय नमस्कार चुरू का। इसके पश्चात 8:00 दिल्ली से समाचार प्रभात। 8:15 पर दिल्ली से ही सुन पाएंगे आप मॉर्निंग न्यूज। 8:30 का समय सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरसंगम का। 9:00 जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 9:10 का समय देशकान का। 9:15 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम साहित्य सुगंध। इसके पश्चात 9:30 पर फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक। 10:00 का समय होगा आकाशवाणी मुंबई से प्रसारण का, आप सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 11:05 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इसके पश्चात 12:00 गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरबहार। 12:30 का समय माटी के स्वर का। दोपहर 1:00 जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 1:05 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला जगत। 2:00 का समय होगा दिल्ली से प्रसारण का, जिसमें पहले सुन पाएंगे आप मिड डे न्यूज 2:00 और 2:15 पर दोपहर समाचार। 2:30 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने का। इसके पश्चात सायंकालीन सभा में शाम 5:00 आप सुन पाएंगे कार्यक्रम युववाणी। 6:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार। 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 6:10 का समय देशभक्ति फिल्मी गीत का। और इसके पश्चात 6:20 पर सुन पाएंगे आप दिल्ली से संस्कृत में समाचार। 6:30 पर जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर जयपुर से ही जिले की चिट्ठी। और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। 7:00 का समय होगा किसान भाइयों के कार्यक्रम किसान वाणी का। इसके पश्चात राजस्थानी लोक संगीत आप सुन पाएंगे 7:30 पर। 8:00 फिल्म संगीत का

कार्यक्रम गुलदस्ता 8:45 पर दिल्ली से समाचार संध्या, रात्रि 9:00 न्यूज एट 9, 9:15 पर राजस्थानी लोक संगीत, 9:30 पर दिल्ली से प्रसारण होगा युवा भारती का, रात्रि 10:00 दिल्ली से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण और अब समय है चिंतन का। चिंतन के लिए आज हमने जो विचार लिया है वो आपको बताएं कि जिस प्रकार पैरों से कांटा निकलने के बाद चलने में आनंद आता है, ठीक उसी प्रकार मन से अहंकार निकलने के बाद जीवन जीने में असली आनंद आता है। श्रोताओं, ये बात तभी पता चलती है जब व्यक्ति अपने मन के अहंकार को निकाल देता है। बहुत से कार्य जीवन में ऐसे होते हैं जिनको जब हम करते हैं तभी उसका सही तरीके से आकलन हो पाता है, सही तरीके से उसको समझा जा सकता है। ऐसे में अहंकार रहित व्यक्ति का व्यवहार व्यक्ति को किस प्रकार का आनंद प्रदान करता है ये तभी पता चलता है जब व्यक्ति अपने अहंकार से अपने आप को मुक्त कर लेता है। आप देखते हैं इस दुनिया में आपको ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के अहंकार से ग्रसित मिलते हैं। जो कुछ भी नहीं है वो अपने आप को बहुत कुछ समझता है, ये आपने देखा है। बहुत से लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, लोग मुझे फला फला कहते हैं। अब कोई उनसे पूछे भाई आपका नाम फला फला है तो लोग आपको फला फला ही कहेंगे। अगर आपका नाम फला फला के अलावा कुछ और होता तो लोग बाग आपको कुछ और कहते हैं। अब इसमें भी आत्म गौरव का या फिर कहें अहंकार का विषय कहां से आता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, बोलते हैं। ऐसे लोगों से अगर आप पूछेंगे कि आप अपने अस्तित्व के बारे में बताएं, आपका ये अस्तित्व, आपका ये शरीर कितने समय तक आपका साथ निभाएगा, तो उनके पास उत्तर नहीं होता। मानकर चलिए जो भी व्यक्ति अपने समय में बहुत बड़े अहंकारी हुआ करते थे, जिनके कहने से, जिनके कहे अनुसार अगर हम माने तो उनके कहने से पत्ते हिला करते थे या फिर पत्ते रुक जाते थे, अपने आप को इस प्रकार के अहंकार से वो ग्रसित करते हुए बातचीत किया करते थे। लेकिन समय इस प्रकार से बदलता है कि व्यक्ति को पता चलता है कि यह सब कुछ समय का ही चक्कर था, मेरा कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन जब तक वो समय नहीं आता है तब तक व्यक्ति अपने आप को उस प्रकार की सोच में ला नहीं पाता है। वो सोचता है सब कुछ मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। आप देश में विभिन्न प्रकार के चुनावों में

जिस प्रकार की सत्ताएं बदलती है उसमें आप देखते हैं कि जो पहले किसी समय सत्ता में हुआ करते थे वो सत्ता के मद में इस प्रकार से चूर हुआ करते थे कि उनकी सोच देखकर लगता था कि ये पता नहीं किस प्रकार के निर्माता है, पता नहीं किस दुनिया को इन्होंने निर्मित किया है। लेकिन जब सत्ता जाती है तो उनको पता चलता है कि हम कुछ नहीं थे, सिर्फ समय था। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझ लेता है और अपने आप को अहंकार से मुक्त करके चलता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने जाने के बाद भी जीवित रहता है, लोगों के दिलो दिमाग में एक अच्छी याद के रूप में। और इसके विपरीत जो व्यक्ति अहंकार से युक्त होता है उसको कोई भी व्यक्ति याद नहीं करना चाहता। इसलिए अपने जीवन से अहंकार निकाल कर देखिए, आपको कितना आनंद आएगा। चिंतन में इतना ही, और अब कार्यक्रम भक्ति संगीत का वंदना।

शुद्धम हनुमान चालीसा के ये पाठ अभी सुन रहे थे आप अमिताभ बच्चन और साथियों की आवाज में। अगली भक्ति रचना रविंद्र जैन और साथियों की आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम चूरू से भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अभी आप सुन रहे थे रविंद्र जैन और साथियों की आवाज में ये भक्ति रचना, और अगली भक्ति रचना हरि हरियन की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म, माफ कीजिएगा, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। और अब शुरू होने वाला है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 6:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बहार।

आया सावन झूम के इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोंसले की आवाज में, और अब सुनिएगा मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में इस फिल्म का गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में बनफूल फिल्म का गीत, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत किशोर कुमार की ही आवाज में, फिल्म का नाम गौतम गोविंदा। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे बरसात की एक रात फिल्म का गीत, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया आरडी बर्मन ने।

0: इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और इसे संगीत दिया आरडी बर्मन ने।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 102.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:20 हो चुके हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

गरुड़ को अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाते हुए काकभुशुंडी ने कलयुग की चारित्रिक विशेषताओं का प्रसंग छेड़ दिया है, जिसे उन्होंने स्वयं अपनी आंखों देखा ही नहीं अपितु बहुत कुछ भोगा भी था। कलिकाल वैसे तो पाप और अवगुणों का युग है, किंतु उसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:30 हो चुके हैं। समय कार्यक्रम नमस्कार।

श्रोतों, आप सुन रहे हैं FM चूरू से कार्यक्रम नमस्कार चूरू। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कार्य के बारे में। अब देखिए, कार्य तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, और सिर्फ व्यक्ति की ही हम नहीं कह सकते, जो भी प्राणी इस धरती पर आया है वो किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई कार्य निश्चित रूप से कर रहा है। अब आप चींटियों को देखें, अब आप क्या सोचते हैं, क्या वो बेकार है? नहीं, वो भी अपने

किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, और कई बार आप देखेंगे तो महसूस करेंगे कि अरे यार कितनी जल्दी में है ये, पता नहीं कितने काम छोड़ के आई है या फिर कितने काम करने के लिए जा रही है। बिल्कुल लगातार एक के बाद एक उनका क्रम लगा रहता है। छोटे से छोटे प्राणी को अगर आप देखेंगे तो वो किसी न किसी कार्य में लगा है। किसी कीड़े को देखेंगे, जैसे मान लो किसी लकड़ी को खराब करने के लिए, हम जो कहते हैं कि लकड़ी में दीमक लग गई, तो दीमक भी अपना काम कर रही है कि वो लकड़ी को खराब कर रही है। यानी अगर आप देखेंगे तो आपको इस प्रकृति में हर कोई किसी न किसी काम में लगा रहता है। मधुमक्खी जो है वो शहद इकट्ठा करती रहती है, चिड़िया है, कौवे हैं, प्रत्येक प्राणी किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी कार्य में लगा रहता है। अब कार्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्धारित किया हुआ है कि उसको किस प्रकार का कार्य करना है, ये प्रकृति द्वारा निर्धारित किया गया है। मानव के लिए ये बहुत सुलभ है कि उसके कार्य करने के लिए उसके पास बहुत से विकल्प है, और ये विकल्प प्रकृति ने ही उसको दिए, उसको दिमाग दिया, उसको हाथ पैर दिए, इससे वो बहुत से कार्य भिन्न भिन्न प्रकार के कर सकता है, जिससे वो अपना भला कर सकता है, इसके अलावा प्रकृति का भला कर सकता है, और इसके अलावा जीव जंतुओं का भला कर सकता है। यानी इस जीवन को न सिर्फ सुखद बना सकता है बल्कि धरती को सुखद और शांति प्रिय बना सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि मानव ने अपने आप को खत्म करने का, अपने आप को परेशान करने के बहुत से साधन बना लिए, बड़े बड़े हथियार, इससे इस प्रकार के हथियार, और आगे से आगे बनाता जा रहा है कि एक जगह बैठा बैठा लड़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बटन दबता है और उसके पश्चात आप परिणाम देखते हैं कि कहाँ पे जाके कोई मिसाइल लगी, क्या टूटा, क्या फूटा, क्या कुछ बर्बाद हुआ। यानी व्यक्ति ने अपनी बर्बादी के साधन अपने कार्य के माध्यम से जुटाए। अब कार्य की अगर बात करें तो हर कार्य के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी की आवश्यकता होती है तो वो होता है समर्पण। ये केवल एक वाक्य नहीं है बल्कि सफलता का मूल सिद्धांत है। दार्शनिक दृष्टि से समर्पण का अर्थ है अपने लक्ष्य, कर्तव्य या कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और एकाग्रता रखना। जब व्यक्ति किसी कार्य को केवल मजबूरी से करता है तो उसके परिणाम साधारण आते हैं, लेकिन जब वही कार्य समर्पण के साथ किया जाता है तो उसमें उत्कृष्टता और गुणवत्ता स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है, और उससे उसका परिणाम भी उत्कृष्ट ही आता है। अब सूर्य प्रतिदिन बिना रुके अपना प्रकाश देता है, वो ये नहीं सोचता कि आज बादल है या नहीं है, उसका समर्पण ही पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। इसी प्रकार मनुष्य का समर्पण उसके व्यक्तित्व को ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। बात करें थॉमस एडिसन की, हजारों असफल प्रयोगों के बाद बल्ब का सफल आविष्कार किया, रुके नहीं। यदि उनके भीतर समर्पण न होता तो वे प्रारंभिक असफलताओं के बाद रुक जाते। आप देखेंगे कि इस दुनिया में जो जो बहुत महान हुए हैं, बहुत सफल हुए हैं, उनके पीछे उनकी मेहनत, उनकी डेडिकेशन, उनका समर्पण उच्च क्वालिटी का है। आपने नाम सुना है कुंग फू मास्टर ब्रूस ली का। उनका कहना था कि मैं ऐसे लोग जो बहुत से कुंग फू के दाव पेच पर प्रयोग करते हैं और जानते हैं, उनसे नहीं डरता, बल्कि मैं उनसे डरता हूं जिसने एक ही दाव पेच को कई बार प्रैक्टिस किया है।
कई हजार बार प्रैक्टिस किया।

यानी एक चीज को बार बार बार बार जब हम करते हैं तो उसमें न सिर्फ हमारा समर्पण होता है, इसके अलावा उसमें व्यक्ति पूरी तरह से अपने आप को निखार पाता है और वो उसका निखार उसके परफेक्टनेस की तरफ उसको लेकर जाता है। कहने का अर्थ है कि समर्पण का अर्थ केवल कठिन परिश्रम नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और निरंतरता है। जो व्यक्ति अपने कार्य में मन, बुद्धि और समय को पूरी ईमानदारी से लगाता है तो सफलता उसके कदम चूमती है। प्रतिभा व्यक्ति को अवसर दिला सकती है लेकिन समर्पण उसे महान बनाता है। इसलिए चाहे शिक्षा हो, कला हो, खेल हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हर कार्य के लिए समर्पण आवश्यक है और यही साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाता है। और इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो समर्पण हो वो प्राणी मात्र के भले के लिए हो, ना कि किसी प्रकार के डिस्ट्रक्शन के लिए या फिर किसी के विनाश के लिए नहीं हो। तो ऐसा समर्पण, ऐसा प्रयास और ऐसा परिणाम पूरी दुनिया के लिए सार्थक होता है। आप सुन रहे हैं FM चूरू से कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा

शूतों कच्चे धागे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में और कार्यक्रम है नमस्कार चूरू। कार्यक्रम में अब हम बात करेंगे तारीफ पे। तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती? सबको लगती है। कुछ लोगों को तो झूठी तारीफ भी अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ सच्ची तारीफ ही अच्छी लगती है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको अपना आकलन अच्छे से ज्ञात होता है। वो जानते हैं अपने बारे में, मैं क्या हूं, क्या कर सकता हूं और क्या कुछ मैंने किया है। अब ऐसे में बहुत से लोग उसको झूठा ही तारीफ के पुल बांध कर चढ़ाना चाहता है, आप तो ऐसे हैं, आप तो ऐसे हैं। तो बहुत से लोगों को तो ये बातें अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको झूठी तारीफ अच्छी नहीं लगती। लेकिन तारीफ जहां पर आवश्यक हो वहां पर करनी भी चाहिए। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो सच्ची प्रशंसा या तारीफ का अभाव व्यक्ति और समाज दोनों को प्रभावित कर सकता है। इससे अगर व्यक्ति की बात करें तो आत्मविश्वास में कमी आती है। व्यक्ति कोई कार्य करता है और पूरी लगन के साथ करता है, अच्छे से करता है, उसके बाद उसकी कोई तारीफ नहीं होती तो उसको लगता है कि मेरा करना व्यर्थ है, किसी को पसंद ही नहीं आया, किसी ने इस चीज को नोटिस में ही नहीं लिया। तो ऐसे में आत्मविश्वास में कमी होती है, कार्यक्षमता में कमी होती है, प्रेरणा कम होती है। और बात आए रिश्तों की, तो अगर किसी रिश्तेदार से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वो किए गए कार्य की तारीफ करे और वो नहीं करता तो इससे रिश्तों में भी दूरी आती है। बहुत से लोग झूठी प्रशंसा करते हैं बिना किसी बात के, वो भी गलत है। सच्ची प्रशंसा अगर नहीं होती है, केवल औपचारिक या स्वार्थपूर्ण तारीफ होती है, तो विश्वास कम होने लगता है। व्यक्ति समझ जाता है कि शब्दों में

सच्चाई नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को जानता है कि मैंने क्या कुछ किया है और क्या कुछ मैं कर सकता हूं, मेरे में क्या क्वालिटी है। अब इस प्रकार की बातें जब व्यक्ति अपने बारे में जानता है और उससे इधर कोई बात, उससे झूठी कोई बात अगर उससे कही जाए कि आप तो आप हैं, आपके क्या कहने, इस प्रकार की झूठी तारीफें व्यक्ति को समझ में आती है कि ये सिर्फ पॉलिशिंग का काम कर रहे हैं, ये तारीफ नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति को कहें तो ज्यादातर यही देखने में आता है कि जो सच्ची तारीफ होती है, जो उसके किए गए कार्य होते हैं उसकी तारीफ उसको पसंद आती है। हालांकि समाज में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनमें बुद्धि का अभाव होता है और वो खुद कुछ नहीं कर पाते, इसलिए उनकी झूठी तारीफ की जाए तो वो बहुत खुश होते हैं। और इस प्रकार के जो पॉलिशिंग करने वाले लोग होते हैं उनको वो पसंद भी करते हैं। ऐसे में अच्छे कार्यों का महत्व जो है वो कम हो जाता है। जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है उसको उससे प्रेरणा नहीं मिलती। एक ही विभाग में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक बहुत अच्छे से कार्य करता और एक बिल्कुल निखट्टू है। अब अच्छे से जो कार्य करता है परिणाम लाता है, उसके बाद भी उसको कहीं किसी प्रकार की कोई प्रशंसा या तारीफ नहीं मिलती तो वो हतोत्साहित होता है। इसलिए जहां पर आप जिस भी व्यक्ति को देखें कि उसने कुछ अच्छा किया है, वो चाहे अपने लिए करे किसी और के लिए करे, अच्छा किया है तो उसकी तारीफ कर दें। क्योंकि तारीफ किसी की करने से आपकी जेब से कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन सामने वाले को अच्छा लगेगा और आपका व्यवहार भी अच्छा होगा। आप सुन रहे हैं।

श्रोताओं, FM चूरू से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू। हमारा अगला प्रसारण आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से, जिसमें पहले सुनेंगे समाचार प्रभात 8 बजे और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज।

0: और लाइट बिल के?
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी। अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइन 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
4: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
3: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
5: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
3: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारी पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग 2 गुनी होकर 64.3% पर पहुँच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में

0: सबूत की है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइन की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीत कर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य

0: स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कुंकड़ी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की ये प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिव कुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में आपका सुनवा रहे हैं नसीम शहर के लिखे बोल और आवाज हरिहरन की।

सुगम संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से। हमारा अगला प्रसारण आप सुन पाएंगे आकाशवाणी जयपुर से, जिसमें आप सुन पाएंगे हिंदी में प्रादेशिक।

सरकार ने स्पष्ट किया, देश में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी स्टॉक संरक्षित करने के निर्देश दिए। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेख

0: नहीं है प्रगति की। देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हुआ। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित। मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्रियों ने किया श्रम दान। और मौसम में आए बदलाव के बाद पूर्वी उत्तरी जिलों में प्रचंड गर्मी से मिली राहत। अगले 2 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
0: इस बीच 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ भारतीय वाणिज्य जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और इसके 3 जून तक स्वदेश पहुंचने की उम्मीद है। इधर पचपदरा एचपीसीएल रिफाइनरी में बीते महीने संयंत्र में आग के बाद रुकी हुई गतिविधियों और कार्यों की प्रगति को लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने एचपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। रिफाइनरी से आगामी 1 जून से कमिश्निंग गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की निकासी भी अगले कुछ सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कल जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़ों के अनुसार देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हो गया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों को लगे टीकों का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग 2 गुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। बोर्ड ने विद्यार्थियों को किसी भी जानकारी के लिए सीबीएसई की टेली परामर्श हेल्पलाइन पर संपर्क करने की सलाह दी है। इधर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। 12वीं का परिणाम 71.65% और 10वीं कक्षा का परिणाम 64.69% रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: देश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत इन दिनों कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 25 मई से शुरू हुए अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई और पेयजल संरचनाओं का जीर्णोद्धार तथा श्रमदान के साथ जागरूकता आयोजन तथा जल संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रभारी मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी इन आयोजनों में बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अभियान के तहत कल जयपुर के नींदड़ वन क्षेत्र में श्रमदान किया। उन्होंने पक्षियों के लिए परिंडे लगाए और इको ट्रेल का लोकार्पण किया। इधर जल भवन परिसर में जल संरक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्मिकों ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किए और जल के सदुपयोग का संदेश दिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। बालोतरा के रेवाड़ा जैतमाल अमृत सरोवर पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री के विश्नोई ने श्रमदान किया। चित्तौड़गढ़ में प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने जिलाधिकारियों की बैठक लेकर अभियान की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी जिलों के साथ कई हिस्सों में कल देर शाम मौसम में अचानक बदलाव से लोगों को बढ़ते तापमान से निजात मिली है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर सहित 8 शहरों में दोपहर बाद आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। इस दौरान राजधानी जयपुर सहित आसपास के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग के अनुसार भीषण गर्मी के बीच जयपुर, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, अलवर और झुंझुनू जिलों में वर्षा हुई। झुंझुनू जिले के कई इलाकों में अंधड़ आया। इस दौरान आसमान में धूल का गुबार छा गया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में देर शाम मौसम का मिजाज बदला और धूल भरी आंधी के साथ झमाझम बारिश ने लोगों को तेज गर्मी से राहत दी। धौलपुर, भरतपुर, दौसा सहित पूर्वी जिलों में भी मौसम के बदलाव से लोगों को बढ़ते तापमान से निजात मिली। अजमेर में दिन भर तेज धूप के बाद देर शाम मौसम ने करवट बदली और आंधी बिजली की गतिविधियों के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया, जो देर रात तक जारी रहा। बेमौसम की बरसात से जिले में कई स्थानों पर पेड़ों के गिरने और बिजली के पोल उखड़ने की खबर है। हाड़ौती क्षेत्र में भी आंधी बारिश की गतिविधियां हुई, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली। नागौर और आसपास के इलाकों में भी देर रात तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने लोगों को गर्मी से कुछ निजात दिलाई। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई।
1: नागौर जिले में शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे तेज हवा के साथ शुरू हुई बारिश ने लोगों को नौतपा में गर्मी से राहत दी। वहीं जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई। दिन भर उमस और गर्मी से परेशान लोगों को देर रात चली तेज आंधी और बरसात से राहत मिली। बारिश के दौरान शहर के कई निचले इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया। जिले के असावरी, तौसर सहित जिला मुख्यालय के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नींबू के आकार के ओले गिरे। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: मौसम विभाग जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज और कल जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभागों में बारिश के साथ मेघ गर्जन और आंधी की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। दूसरी ओर प्रदेश के पश्चिमी और सरहदी जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान भीषण गर्मी की स्थिति बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे से आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट के मौजूदा संस्करण में राजस्थान रॉयल्स का सफर समाप्त हो गया है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन गुजरात टाइटंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 219 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता का फाइनल कल गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने स्पष्ट किया, देश में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी स्टॉक संरक्षित करने के निर्देश दिए। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित। मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्रियों ने किया श्रमदान। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की। देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हुआ। और मौसम में आए बदलाव के बाद पूर्वी उत्तरी जिलों

0: जिलों में प्रचंड गर्मी से मिली राहत, अगले दो दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 9:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति की

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत, और अब समय है कार्यक्रम साहित्य सुगंध का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाते हैं हिंदी कहानी राग विराग। कहानीकार है राजेंद्र शर्मा।
1: कि ये सारी फाइलें जितनी शीघ्र हो सके जांच के लिए आगे भेजनी है। मेज पर फाइलें रखते हुए चपरासी परमेश्वर बोला, एक बार इन्हें यहीं रख दे, देख लेंगे। पहले ऑनलाइन पोर्टल का काम निपटा लूं। मौसम को देखते हुए इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं, कब मुंह फेर ले। तरह तरह की समस्याएं है रे परमेश्वर। आंधी आने की आशंका होते ही बिजली विभाग पहले ही बिजली काट देता है।

वर्षा शुरू होते ही बिजली का चले जाना धर्म बन गया। इतना काम ऑनलाइन हो गया, फिर भी कागजों के पुलिंदों से पीछा नहीं छूटता। दिन भर कंप्यूटर की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठे रहो तो सिर फटने लगता है। माउस और कीबोर्ड पर अंगुलियां चलाते हुए लेखाकार अशोक जी बोले, चाय पिलाऊं क्या साहब? चपरासी ने पूछा। वह अभी वहीं खड़ा समय काट रहा था। इस गर्मी में चाय का क्या मोह है रे परमेश्वर, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग इतनी चाय कैसे पी जाते हो। पीने के बाद कुर्सी छोड़कर दो घड़ी बाहर स्मोकिंग जोन में खड़ा होना पड़ेगा। रहने दे परमेश्वर, अधिक चाय कोई काम की नहीं। पीछे की कुर्सी पर बैठी क्लर्क आभा मुस्कुराती हुई बोली। आभा की बात सुनकर अशोक जी ने कंप्यूटर से दृष्टि हटाई और हंसते हुए बोले, चाय पीने के बाद उसे उगाने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा, परंतु यहाँ तुम्हारे जैसे चौकीदार जो बैठे हैं, सरकार का नियम तो भाई उचित है। कहने वाले कहते होंगे कि पैसा मेरा, सिगरेट मेरी और पीने वाला भी मैं। अब तो कोई धूम्रपान करता दिखाई दे जाए तो साथ वाले ही वीडियो बनाकर हंगामा खड़ा कर दें। मैं मानता हूं कि सिगरेट कोई अच्छी चीज नहीं, पर आदत भी कहां छूटती है। संगीत और सिगरेट, इनकी लत तो हमारे साथ ही जाएगी। काम से थोड़ा विराम लेते हुए अशोक जी आभा से बातचीत करने लगे और वॉल्यूम कुछ बढ़ा दिया। उनके कंप्यूटर में जगजीत सिंह, मेहंदी हसन और गुलाम अली की असंख्य गजलें थी जो दिन भर बजती रहती थी। आभा को अधिक काम नहीं दिया जाता, मानो वह पिछले 6 महीनों से दफ्तर में समय काटने ही आती हूं। अब उसने भी स्क्रीन से नजर हटाकर बातचीत का मन बना लिया था। दोपहर के 2-3 बजने के बाद सब थक जाते हैं। अशोक जी की नौकरी का अंतिम दौर चल रहा था और आभा को नौकरी का अनुभव मात्र 5-6 वर्षों का था। उसकी आयु 42 वर्ष थी। वह विधवा कोटे से नौकरी में आई थी। उसके पति जो सरकारी सेवा में थे दुर्घटना में चल बसे थे। उसकी 2 बेटियां थी जो अभी पढ़ रही थी। सर, संगीत का नशा तो अच्छा है, पर सिगरेट की आदत बहुत बुरी है। इससे पीछा तभी छुड़ेगा जब आप कठोर मन करके पैकेट उठाकर फेंक देंगे। आपकी सेवानिवृत्ति में 2 वर्ष बाकी हैं। जब घर बैठ जाएंगे तब तो कोई गिनती ही नहीं रहेगी, बैठे बैठे फूंकते रहेंगे। पहला सुख निरोगी काया है, अभी भी संभल जाइए सर। अशोक जी से बातचीत में आभा ज्यादा औपचारिक नहीं होती थी, क्योंकि पहले दिन से उसने देखा था कि यह व्यक्ति निश्चल और निर्मल है। पारिवारिक बातें खुलने के बाद अशोक जी की सहानुभूति और सहयोग आभा के लिए बड़ी ताकत में बदल गया था। विशेषकर गीत संगीत के विषय में दोनों की बातचीत खूब जमती थी। मनुष्य का स्वभाव होता है अपनी जैसी रुचि वाले दूसरे व्यक्ति की ओर झुकाव सहज ही हो जाता है। दोनों के बीच का यह संबंध समझ से परे था, पर इस पर कभी किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। कारण यह भी था कि दफ्तर में सबके साथ आभा का व्यवहार अत्यंत मर्यादित था। अशोक जी की भावुकता लिजलिजी नहीं थी, वे संसार की यथार्थ और आदर्श के बीच की खाई को भली भांति जानते थे। मन से निकट होते हुए भी आभा और अशोक जी कभी एक दूसरे के परिवारों से भी नहीं मिले थे। जो खुद रोगी है वही मुझे उपदेश दे रही है, वाह रे कलयुग। अशोक जी मुस्कुराए। होने को कौन टाल सकता है आभा, तुम तो बहुत परहेज रखती थी, फिर भी दोनों किडनियां तुझसे रूट गई। खैर, तुम्हारी बातें पूरी तरह सही है, खुद को ध्यान तो रखना ही चाहिए। आभा की दुखती रग छू जाने का आभास होते ही अशोक जी गंभीर हो गए और मेहंदी हसन की गजल जिंदगी से गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे, पॉज कर दी। हल्की मुस्कान बिखेरती आभा कुछ क्षण मौन रही, फिर लंबी सांस लेकर बोली, अभी तक कोई आराम नहीं मिला। बड़े बड़े डॉक्टर कह चुके हैं कि अब किडनी ट्रांसप्लांट के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं, और ट्रांसप्लांट तभी हो जब कोई किडनी डोनर मिले। हर दिन लगता है मानो बहुत कम दिन बचे हैं। मनोबल कमजोर मत करो आभा, सब अच्छा होगा। आजकल चिकित्सा विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है। पहले किडनी मैच होने में बहुत कठिनाई थी, अब सुविधाएं बढ़ गई हैं। कठिन तो है, पर कोई न कोई डोनर जरूर मिलेगा। जब तक वह नहीं होता, डायलिसिस की पीड़ा सहनी ही पड़ेगी। संतोष करो कि इलाज सरकारी खर्चे पर हो रहा है। हौसला बढ़ाते हुए अशोक जी ने मेज के दराज से सिगरेट का पैकेट निकाला और खड़े हो गए। उनके ललाट के सलवटें और तनाव भीतर की व्याकुलता प्रकट कर रहे थे। मैं तो आपको आज यही कहना चाहती हूं कि आप जबरदस्ती संकट को बुलावा मत दीजिए। इतनी बातों के बाद भी अब आपको अपने विशेष जोन

में खड़े होने की तलब हो रही है ना, कोई क्या कर सकता है सर, आभा बनावटी मुस्कान के साथ बोली। अशोक जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और दफ्तर से बाहर निकल गए। आरंभ से ही अशोक जी के मन में आभा के लिए एक स्नेहिल भाव था। वे दूसरे जिले से यहां पहली नियुक्ति लेकर आई थी। आभा के पिता शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता तो नहीं थे।

चिंता के कारण आज अशोक जी का मन कहीं टिक नहीं रहा था। वे बाहर से वापस ऑफिस में आए और सीधे अधिकारी के चैम्बर में जा बैठे। पद में छोटे होते हुए भी बड़े अधिकारी उनका सम्मान करते थे। उनके मन में जो बात होती वे अधिकारी से बेधड़क कह देते। सर, ये फाइलें भेजी थी आपने, अभी कर दूंगा, आज की तारीख में नहीं बढ़ जाएगी। मन हल्का करने के लिए इधर आ गया, सोचा आज साहब से ऑफिस के झंझटों के अलावा भी बात करूं। अशोक जी गंभीर स्वर में बोले, क्या बात है, आज मन इतना भारी क्यों है आपका? तबीयत तो ठीक है, चाय कॉफी मंगवाऊं? अफसर ने काम करते हुए पूछा। आभा के विषय में बात करनी है, आपकी जानकारी और पहुंच से यदि किडनी की व्यवस्था हो सके तो प्रयास कीजिए ना साहब, दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। एक किडनी तो निष्क्रिय है, दूसरी भी केवल 5-7 आने भर बची है। डायलिसिस तो उधार की सांस जैसा है, उसके पिता नहीं है और परिवार में भी कोई आगे पीछे नहीं। 2 बेटियां हैं जो अभी स्कूल कॉलेज में है। बेटियों की किडनी लेने में अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां हैं। कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे सलाह करूं, यदि कोई उपाय बन जाए तो वह जी सकेगी सर, आखिर स्टाफ भी तो परिवार ही होता है। अशोक जी ने पहली बार अपने अधिकारी के समक्ष आभा के हिमायती बनकर बात की। अधिकारी ने गंभीर होकर कहा, अशोक जी बात तो चिंता की है पर हम क्या कर सकते हैं, दफ्तर की ओर से जितनी सहायता हो सकती है दे ही रहे हैं, ड्यूटी में ढील आदि, इलाज का खर्च सरकार उठा ही रही है। किडनी तो तभी मिले जब कोई डोनर तैयार हो, आप जानते हैं कि पूरे देश में ट्रांसप्लांट कराने वालों की लंबी सूची है, बस प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इस मामले में शॉर्टकट लेने से कई बार मुसीबतें बढ़ जाती है, आजकल किडनी बेचने वाले गिरोह भी पकड़े जाते हैं। दूसरी बात, लाखों रुपयों का प्रबंध कोई हंसी खेल नहीं, भावनाओं में बहकर विवेक नष्ट नहीं करना चाहिए। हम सरकारी आदमी हैं, ऐसी उलझनों में नहीं पड़ सकते, परिवार या परिचित डोनर हो तभी रास्ता निकलता है। देखेंगे साहब, किडनी के लिए कुछ न कुछ उपाय तो करना पड़ेगा, जहां आपकी सहायता की आवश्यकता हो मन से साथ दीजिएगा, आज यही प्रार्थना करने आया हूं। अब जाकर सीट संभालूं, पेंडिंग काम निपटाने हैं। 2 दिन आभा, उसकी बेटी और अशोक जी जयपुर के अस्पताल पहुंचे, जहां उसका उपचार चल रहा था। इस बार अशोक जी स्वयं कार किराए पर करके ले गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे रूटीन चेकअप करवाना है। अस्पताल पहुंचते ही आभा का डायलिसिस आरंभ हो गया और दूसरी तरफ अशोक जी विभिन्न जांचों और डॉक्टरों से सलाह मशवरा करने लगे। डायलिसिस के कुछ समय बाद बड़े डॉक्टर गुप्ता ने आभा को अपने कक्ष में बुलाया, वहां अशोक जी भी बैठे थे। आभा जी, अब कैसी है तबीयत, कुछ आराम लग रहा है या क्या? मारवाड़ी डॉक्टर गुप्ता मुस्कुराकर बोले, जैसा हमेशा होता है वैसा ही, मशीनें अपना काम करती हैं, मुझमें तो कुछ बचा नहीं, फिर आना तो यही है, आभा ने सीधे स्वर में उत्तर दिया। उसे पता था कि डॉक्टर झूठी दिलासा दिलाते हैं। आज आशा की एक किरण दिखाई दी है आभा जी, एक शुभ समाचार है, अशोक जी के प्रयासों से आपके लिए एक किडनी डोनर तैयार हो गया है। मुझे विश्वास है कि आपकी आयु अब अच्छी तरह बढ़ जाएगी। आज डोनर की सारी जांचें हो गई, उसकी दोनों किडनियां स्वस्थ हैं। सबसे बड़ा संजोग देखो कि ब्लड ग्रुप भी यूनिवर्सल है और कोई अन्य बीमारी भी नहीं, वह एक किडनी दे देगा, अब केवल कागजी औपचारिकताएं शेष हैं। डोनर का मन बदल जाए उससे पहले आप शीघ्र निर्णय कीजिए कि ऑपरेशन कब करना है। डॉक्टर ने एक सांस में सब कुछ कह दिया, जिसे सुनकर आभा स्तब्ध रह गई, कभी डॉक्टर की ओर देखती कभी अशोक जी की ओर, फिर अचानक उदासी से बोली, डोनर तो मिल गया लेकिन रुपए, मैं सब आप अशोक जी से बात कर लीजिएगा, मैंने इन्हें सब समझा दिया है, अब आप घर जा सकती हैं, बस 2 दिन पहले बता दीजिएगा कि ट्रांसप्लांट कब करना है, घबराने की आवश्यकता नहीं, यहाँ ट्रांसप्लांट बाद की रिजेक्शन रेट न के बराबर है, ईश्वर आपके साथ है, सब कुछ अच्छा होगा। इतना कहकर डॉक्टर गुप्ता अपने काम लग गए। रवाना होने का संकेत मिलते ही अशोक जी और आभा बाहर आ गए। सर, आपने अपनी रूटीन जांचें करवाई, वे सब ठीक है ना? दूसरी बात, डॉक्टर जिस डोनर की बात कह रहा था वह सच है या मेरा

रुपए कितने लगेंगे? कार में बैठते समय आभा ने एक साथ ही सवाल दाग दिए। मेरे सब कुछ नॉर्मल है, अब तुम्हें भी अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रही बात डोनर और रुपए की, तो ये सारी बातें कल ऑफिस में करेंगे। साहब और मैं सब संभाल लेंगे। अब आंखें बंद कर गीत गजलों का आनंद लेते हुए सफर करें। अगले दिन अशोक जी सबसे पहले अधिकारी के चैम्बर में गए। 5-7 मिनट की बातचीत के बाद बाहर आकर अपनी सीट पर बैठ गए। हमेशा की तरह आभा देरी से आई। आते ही अधिकारी ने आभा को अपने चैम्बर में बुलाया। 10-1 मिनट बाद चपरासी अशोक जी को पुनः अफसर के चैम्बर का बुलावा देने आया। वे चैम्बर में जाकर बैठे। चैम्बर में एक छोर दूसरी कुर्सी पर आभा बैठी थी। उसने एक नजर अशोक जी की तरफ देखा, परंतु अशोक जी निर्लिप्त भाव से अफसर की तरफ देख रहे थे, जो डेस्कटॉप पर नजरें गड़ाए हुए थे। कुछ ही क्षणों का मौन भी बहुत भारी लग रहा था। अचानक ही आभा की सिसकियों की ध्वनि सुनाई दी। अशोक जी ने गर्दन घुमाकर एक नजर आभा की तरफ देखा। आभा अशोक जी की ओर देख रही थी। उसने दुपट्टे से आंसुओं को पोंछा। उसकी भीगी पलकों से जाहिर हो गया था कि वह पिछले कुछ मिनटों से दुख के सागर में डूबी हुई थी। मौन तोड़ते हुए बोली, सर, इतना बड़ा निर्णय मुझसे पूछे बिना क्यों लिया आपने? मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि आज के समय में ऐसे भावुक मनुष्य भी होते हैं। मैं आपकी क्या लगती हूँ? सब अपने अपने दुख भोगते हैं, फिर आप क्यों किसी पराई पीड़ा को अपने ऊपर लेने को तैयार हो गए? आपके परिवार की अनुमति के बिना इतना बड़ा निर्णय? आप मुझे किडनी दे रहे हैं और मुझे बताया तक नहीं। सभी जांचें करवाई मेरे लिए, सारे इंतजाम करके आ गए। आपकी उम्र तो देखिए, मैं तो भोग ही रही हूँ। आपने अपने भविष्य के लिए पीड़ा उधार क्यों ली? यह कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगी? वह बोलती रही। अशोक जी ने उसकी तरफ देखा नहीं, शांत बैठे रहे। फिर दृढ़ स्वर में बोले, बात पूरी हो गई तुम्हारी? यह मान लो मनुष्यता के नाते मैं तुम्हारा जीवन बचाना चाहता हूँ। यदि तुम्हें दुख ही भोगना है तो वह तुम्हारी इच्छा। मेरी किडनी मेरी है, एक से काम चल जाए तो दूसरी का क्या अचार डालूंगा? अंत में यह शरीर लकड़ियों में ही तो जलकर राख होना है, इतना मोह किस काम का? रही घर वालों की बात, जानता हूं वे इस निर्णय के पक्ष में नहीं होंगे। सबसे चुभता सवाल यही होता है कि पराई औरत के लिए इतना बड़ा त्याग आखिर क्यों? और मेरे इस निर्णय से घर में कलह हो सकती है, इसलिए नहीं पूछा। वैसे सभी बातें साहब ने तुम्हें बता ही दी। मैं उम्र का अधिकांश जी चुका हूं आभा, 2-4 वर्ष कम जी लूंगा और क्या। आजकल लोग देहदान तक करते हैं आभा। मैंने 3 बच्चों का विवाह कर जिम्मेदारियां निभा दी, इसे 4th जिम्मेदारी मान लो। मैं जीते जी तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ। संसार में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें दूसरों का सुख देखकर सुख मिलता है। तुम उनमें से एक हो। तुम्हें किडनी देकर मुझे जो संतोष मिलेगा उसका तुम्हें अनुमान नहीं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जीते जी काया के प्रति आपका इतना वैराग्य है या कोरी भावुकता, मुझे नहीं पता। परिवार का आप पर पहला हक है सर। मुझे यही डर है कि इस फैसले का नतीजा आपको भुगतना पड़ सकता है। प्लीज आप एक बार घर पर बात करें। आप कहें तो मैं करूं, अन्यथा हमेशा मेरे दिल पर एक बोझ रहेगा। पता नहीं आपके मेरे बारे में क्या सोच विचार बने। अब आभा कुछ गंभीर होते हुए बोली। कमरे में फिर मौन पसर गया। तभी अधिकारी बोले, अशोक जी ने कल ही सारी बातें मुझे बता दी थी, डॉक्टर से भी पुष्टि कर ली थी, गैर रिश्तेदार डोनर होने पर भी बात हो गई। अशोक जी ने मुझे सौगंध दिलवाई थी कि किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं किडनी दे रहा हूं। परंतु माफी चाहता हूं अशोक जी, इतना नाजुक मसला होने के कारण मैंने आभा की बड़ी बेटी को सब कुछ बता दिया। कल ही उससे मेरी बात हुई है, उसने अपनी माँ को समझाने की जिम्मेदारी भी ली है, अफसर ने भेद खोलते हुए कहा। अशोक जी ने आभा की बेटी को फोन मिलाया और बोले, अशोक नाना बोल रहा हूं बेटा, कल साहब ने तुम्हें सब कुछ बताया है ना, अपनी मम्मी को समझाना, वह आज जल्दी घर आएगी। और फोन काट दिया। नाना? नाना ये क्या बोले आप? फूट फूट कर रोते हुए आभा अशोक जी की तरफ देख रही थी। अशोक जी ने मुस्कुराते हुए आभा के आंसू पोंछे और पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। चैम्बर का वातावरण भारी हो गया था। उसे हल्का करने के लिए अधिकारी मुस्कुराकर

0: सब जानते थे कि अशोक जी का हृदय बड़ा है, पर इतना बड़ा है यह नहीं जानते थे। डर तो मुझे भी लगता है, पर मुझे पता है आप वही करेंगे जो आपको उचित लगेगा। घर वाले एक बार नाराज तो होंगे, पर हम उन्हें मना लेंगे। आपका निर्णय सचमुच अनुकरणीय है अशोक जी। नीति तो यही कहती है कि यदि किसी का जीवन बच रहा हो तो हमें त्याग करना चाहिए और परिवार को बाधा नहीं बनना चाहिए। ऑपरेशन के दिन मैं आपके साथ रहूंगा। भाई वाह, एक बाप बेटी को किडनी दे रहा है। आभा ने आंसू पोंछते हुए कहा, हृदय बड़ा है तभी सिगरेट का इतना धुआं सहते हैं। पर यदि अब भी आपने अपनी ये बुरी आदत नहीं छोड़ी तो मेरा नाम बदल देना। वचन दीजिए पापा, आज ही सिगरेट का पैकेट फेंक देंगे। अशोक जी हल्के से मुस्कुराकर बोले, देखेंगे देखेंगे, तुम्हारा नाम तो नहीं बदलेगा, पहले किडनी बदलेगी आभा। इतना कहकर वे अधिकारी के चैम्बर से बाहर निकल गए।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी राग विराग। कहानीकार थे राजेंद्र शर्मा। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है कार्यक्रम दिल से दिल तक का। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में सबसे पहला कमेंट जो हमें प्राप्त हुआ है वो है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का। ये लिखते हैं चंडीगढ़ से। लिखते हैं, किस्मत सिर्फ एक पन्ना है लेकिन उस पर लिखने की शाही हमारे कर्म है। जो मेहनत करता है उसकी किस्मत भी झुककर सलाम करती है। कभी शिकायत मत करो कि किस्मत साथ नहीं दे रही। पहले खुद से पूछो, क्या तुमने कर्म पूरे मन से किए? याद रखो, किस्मत दरवाजा खोल सकती है लेकिन उस दरवाजे से गुजरना सिर्फ कर्म पर ही निर्भर है। ये बहुत उचित बात सतीश जी ने लिखी है, और इनके साथ है विमला जी। किस्मत वाकई एक पन्ने के रूप में हम उसको मान सकते हैं। अब उस पे क्या लिखा जाएगा वो हम अपने कर्मों से लिखते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि किस्मत और कर्म दोनों का अलग अलग रोल है, लेकिन अलग अलग रोल है तो भी इतना तो हम मान सकते हैं कि किस्मत जो है उसको हम जान नहीं पाते क्या कुछ लिखा है किस्मत में। तो ऐसे में अगर किस्मत के सहारे बैठ गए तो फिर तो मिलना न मिलना सब कुछ अनिश्चित, और ना मिलने की गुंजाइश बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन किस्मत को अगर आप एक तरफ रख दें ये सोचकर कि किस्मत में जो लिखा है वो तो अपने आप मिल जाएगा, लेकिन मेरे हाथ में जो मुझे मिलना लिखा है उसको मैं अपने हाथों से जो कर्म करूंगा उसके माध्यम से पा सकता हूं। यानी अपने कर्म के माध्यम से हम जो पा सकते हैं वो निश्चित है अगर हम मेहनत करेंगे, सही तरीके से किसी कार्य को करेंगे, उसमें पूरी जी जान लगा देंगे तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन किस्मत अनिश्चित है। किस्मत दे सकती है नहीं दे सकती, यानी अनिश्चितता का नाम किस्मत है। इसलिए आपके अपनी जो कर्म है उनको ही आप अपनी किस्मत मान लो, जिस प्रकार से लिखा है कि आप उसको एक पन्ना मान लो, और आप अपने कर्मों के माध्यम से जो लिखते चले जाएंगे वो ही आपकी किस्मत बनती चली जाएगी। बहुत अच्छा कमेंट इन्होंने लिखा है। अगले श्रोता है हमारे गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा सचिन सतीश योगेश और युथव। लिखते हैं, ताकतवर होकर भी झुक जाना श्रेष्ठ गुण है और श्रेष्ठ होकर भी साधारण रहना सर्वश्रेष्ठ गुण है। ये तो कहा गया है कि जो ताकतवर होता है उसकी ताकत का तभी पता चलता है जब वो झुकता है। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। यानी जिस सांप के पास विष हो वो अगर किसी को क्षमा

शोभायमान होती है, लेकिन जो विनीत हो, सरल हो, जिसके तान टूट गए हो, विष हो नहीं, वो कह दे कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, तो उसकी क्षमा किसी प्रकार से प्रशंसनीय नहीं हो पाती है। इसलिए ताकतवर होकर जो झुकता है वही श्रेष्ठ गुण है, सर्वोत्तम गुण है। अक्षय चौधरी ये लिखते हैं साधुलपुर राजगढ़ चूरू राजस्थान से। आज के इस डिजिटल युग में जहां मोबाइल पर भ्रामक जानकारियों और अभद्र भाषा में बिना मतलब समय खराब हो रहा है, वहीं आकाशवाणी केंद्र की आवाज में जो सभ्यता, मर्यादित भाषा और हमारी संस्कृति को संजोए रखने का प्रयास है, वो वाकई बहुत बड़ी बात है। आकाशवाणी से मिलने वाले प्रामाणिक ज्ञान हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। भारतीय संस्कृति, साहित्य, समाचार और कृषि से जुड़े इस सदाबहार माध्यम को बनाए रखने के लिए आकाशवाणी केंद्र को धन्यवाद। धन्यवाद अक्षय जी आपको भी कि आपने हमारे इस कार्य को देखा, सुना, परखा और इसकी प्रशंसा की, क्योंकि जो कुछ आकाशवाणी के माध्यम से श्रोताओं को दिया जाता है वो सटीक होता है और उसमें पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी जानकारी यहां से दी जाए वो सही होनी चाहिए और सटीक होनी चाहिए। मनोरंजन सिर्फ आकाशवाणी का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देना, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से श्रोताओं को अवगत कराना, इस प्रकार का उद्देश्य होता है आकाशवाणी का। तो आपने आकाशवाणी के लिए लिखा, आपका धन्यवाद। ये श्रोता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा लिखते हैं, यू तो हर व्यक्ति के जीवन में वो पल आता है जब वो किसी का हो जाना चाहता है, उसे दिन में प्यार के सतरंगी इंद्रधनुष दिखलाई पड़ते हैं। कुछ खुश नसीब होते हैं जिन्हें कामयाबी मिलती है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें वक्त ऐसे झकझोरता है कि दिल टूट जाता है, फिर उनके लिए दुनिया नीरस, फीकी और बेजान हो जाती है। तो भाई ऐसा है, हम दिनेश जी जो लिखते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से, हम ये कहेंगे कि ऐसे दिल किसी से ना लगाओ कि वो टूट जाए और टूटने के बाद जीवन नीरस, फीका और बेजान लगे, क्योंकि जीवन बहुत बड़े उद्देश्य के लिए होता है। किसी एक छोटे से उद्देश्य में इसको बर्बाद करना कहीं भी उचित नहीं होता है। इसलिए जीवन के महत्व को समझिए और जीवन को छोटे छोटे बातों पर इस तरीके से बर्बाद करना कहीं भी किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और किसी भी प्रकार से बुद्धिमानी का निर्णय नहीं होता है। बहुत से लोग होते हैं जो छोटी सी असफलता से अपनी पूरी जिंदगी को समाप्त कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे लोग अपनी जिंदगी का आकलन बहुत छोटे स्तर पर करते हैं। जिंदगी एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए होती है, लेकिन ये उद्देश्य जिस व्यक्ति को अपने जीवन में मिलता है वही इसके महत्व को समझ पाता है। एक सीमा पर खड़ा सैनिक, उससे पूछिए जीवन की कीमत, वो अपने एक जीवन की कीमत के पीछे पूरे देश को बचाता है। अपनी एक जान के पीछे वो पता नहीं कितने बलिदान अपने देश के लिए करता है, वहां उस जीवन की कीमत होती है। लेकिन छोटी छोटी बातों में जो व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद कर लेता है, नीरस कर लेता है, उसकी सोच व्यर्थ होती है, ये हमारा मानना है। हरि सिंह नायक लिखते हैं सही राम नगर पीथी सर चूरू से। इनके साथ है दुर्गा राम बुडानिया, विक्की राठौड़, सुरेंद्र सिंह राठौड़। लिखते हैं सूर्य कभी अहंकार से नहीं चमकता, वो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है और न इस बात की शिकायत करता है कि काले बादल कभी कभी उसे ढक लेते हैं। बस अपना धर्म निभाता है बिना किसी शर्त के, तुम भी अपने इसी कर्म को निस्वार्थ भाव से करो। जी हाँ, सूर्य बिना किसी अहंकार के और नियमित रूप से अपना कर्तव्य समझकर चमकता है, दुनिया को रोशन करता है। और काले बादल जो हैं उनकी इतनी औकात नहीं होती है कि वो सूरज को ढक ले, वो कुछ पल के लिए हमारी आंखों से सूरज को उछल कर देते हैं, लेकिन सूरज को ढक पाना

उनकी औकात में नहीं है। विष्णु टेलर ये लिखते हैं, जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं है बल्कि ऐसा कुछ करके जाने का नाम है जिससे हमारे जाने के बाद भी लोग हमें सम्मान और प्यार से याद करें। इंसान को अपनी जिंदगी में ऐसे काम करने चाहिए जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए, किसी टूटे हुए इंसान को हिम्मत दे, समाज में अच्छाई फैलाए, माता पिता का सम्मान और सेवा करना, गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करना, हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलना, किसी का दिल ना दुखाना, अच्छे विचार अच्छे संस्कार छोड़ कर जाना, शिक्षा मेहनत और इंसानियत को महत्व देना, रिश्तों को प्यार और अपनापन देकर निभाना, ऐसा व्यवहार करना कि लोग आपकी मौजूदगी में खुश रहे। दुनिया में पैसा नाम शोहरत एक दिन खत्म हो जाते लेकिन अच्छे कर्म अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती। इसलिए जिंदगी ऐसे जियो कि जब लोग आपका नाम ले तो चेहरे पर मुस्कान और दिल में सम्मान हो। ये हैं विष्णु मिस्कीन, रीतिका मिस्कीन, वाणी आरव, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता, आरोही, प्रियांशी, सोनी। ये लिखा है इन्होंने कमेंट दयानंद कॉलेज भवानीपेट शोलापुर महाराष्ट्र से। हमारे एक श्रोता जो थे उन्होंने लिखा था कि प्रेम में सब कुछ खत्म हो गया, दिल सुना सुना लगता है। और ये हमारे श्रोता हैं जिन्होंने जिंदगी के लिए कितने मायने दिए हैं, कितने महत्वपूर्ण जिंदगी के अलग अलग सोपान के बारे में बताया है। तो सबका अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। फिलहाल आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत फिल्म शर्मिली से।

श्रोतों, आप सुन रहे हैं शर्मीली फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत के गीतकार हैं नीरज और संगीतकार एसडी बर्मन। आप सुन रहे हैं एफएम चुरू से कार्यक्रम दिल से दिल तक। श्रोतों, ये कार्यक्रम होता है आकाशवाणी चुरू के फेसबुक पेज पर। आपके जो कमेंट्स इस कार्यक्रम के लिए आते हैं उनको हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो अगला कमेंट जो इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं वो लिखने वाले हैं विजय सुरलकर मोताला महाराष्ट्र से, और इनके साथ है रतनमाला। लिखते हैं, रिश्ता निभाने की कला धैर्य संवाद और आपसी सम्मान का एक खूबसूरत मिश्रण है। ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि ये दिल से निभाएं। जी हाँ, रिश्ते निभाएं और दिल से निभाएं तभी वो रिश्ते हैं। अगले हमारे श्रोता जिन्होंने कमेंट लिखा है ये हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल और चंपा साहू। अगले श्रोता है भैरूलाल वाकतरिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। हमें सदैव सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। निराशाजनक विचार सदैव मानसिकता प्रभावित करते हैं। जैसे हम आधा गिलास भरे होने का उदाहरण देते हैं वैसे ही गंभीर मरीज को कुछ भी लाभ होता है तो हम यही कहेंगे कि ये पहले से बेहतर है, यानी आराम है। यही सकारात्मकता रखनी चाहिए। जी हाँ, सकारात्मकता जीवन में अगर हम रखते हैं तो उससे हमें लाभ है, और नकारात्मकता जब हम रखते हैं तो उससे नुकसान है। तो फायदा किसी प्रकार का है नहीं, तो फिर नकारात्मकता क्यों रखनी? नकारात्मकता रखने से अगर कोई फायदा हो रहा हो तो हमें रखनी चाहिए, लेकिन जब किसी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं है, नुकसान है, तो फिर नहीं रखनी चाहिए ना, बल्कि सकारात्मकता ही रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमें जीवन में बहुत कुछ देता है। अगले हमारे श्रोता हैं सादुल शहर जिला श्री गंगानगर से रामकुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ का। लिखते हैं, मनुष्य जीवन की आत्मा जीते जी भटकती ही रहती है क्योंकि सुख की तलाश और दुख का डर सबसे बड़ी समस्या है। सुख मिल जाए तो संतुष्टि नहीं होती, दुख मिल जाए तो सहन नहीं होता, इसलिए इंसान हमेशा परेशान रहता है। महापुरुषों ने कहा है कि संतुष्टि से बड़ा कोई सुख नहीं, इसलिए जो मिल गया उससे संतुष्ट हो, परमात्मा का धन्यवाद करें, यही खुशी का राज है। एक शेर याद आता है, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मरकर भी घर न मिला चैन तो किधर जाएंगे। तो श्रोताओं, ऐसा है कि जीवन जो मिला है उसमें परेशान होने से कोई अर्थ नहीं है। जैसा भी जीवन मिला है उसको अच्छे से जीने का तरीका आप खोज लें। कमियां निकालेंगे तो कमियां निकालने से उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन अगर उसको सही तरीके से सुधारने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से सुधरने का किसी न किसी प्रकार का कोई तरीका आपको मिल जाएगा। और तरीका चाहे जैसा भी हो, लेकिन आप खुशी से उसमें जीने लगेंगे। अगले श्रोता है हमारे दिग्दर्शन गौड़, ये लिखते हैं मेरठ से, और इनके साथ है कविता गौड़। लिखते हैं, जितना प्रकृति में रहेंगे वातावरण अनुकूल रहेंगे तो निरोगी रहेंगे। कमरे का बाहर का तापमान 45 डिग्री है, आपने ऐसी 10 डिग्री से कम पर एसी चलाया हुआ है, या आप एकदम चिल्ड पानी पी रहे हैं तो उससे आपको सर्दी जुकाम होने बीमार होने की ज्यादा संभावना होगी। ईश्वर ने प्रकृति में कोई भी चीज कोई भी मौसम मनुष्य को नुकसान वाला नहीं बनाया है। ये बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। देखिए, जो भी मौसम बने हैं वो प्रकृति के अनुसार हमें मजबूत बनाने के लिए ही बनाए जाते हैं। ऐसे में हमारे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनसे हम अपना जीवन दूभर निश्चित रूप से कर लेते हैं, और फिर उसका उपाय खोजते खोजते और हम और ज्यादा मुसीबत में अपने आप को डालते रहते हैं। इसलिए आप अपने आप को

जितना प्रकृति से जोड़ कर चलेंगे आप उतना स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ईश्वर ने जो शरीर दिया है वो इस प्रकार से बनाया है, उसकी संरचना इस प्रकार से है कि बाहर से किसी भी प्रकार की दवाई की आवश्यकता ही नहीं होती है। शरीर अपने आप सब कुछ ठीक करता है, लेकिन अगर उस सिस्टम को ही हम बिगाड़ देते हैं तो फिर उसका दोष हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दे सकते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल से दिल तक, और हम इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं हमारे श्रोताओं के कमेंट्स। अगला कमेंट जो है वो है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन, राजेंद्र, ये लिखते हैं पद्मा टाकेज नेपा नगर एमपी से। जिसने भी मुस्कुराकर जीना सीख लिया समझो उसने गमों को भुलाकर खुशी खुशी जीना सीख लिया, क्योंकि मुस्कुराना ही जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है जो सामने वाले के चेहरे पर बड़े से बड़े गम को भुला देती है और व्यक्ति की नई शुरुआत करने हेतु उसको प्रेरित करती है। जी हाँ, जिंदगी में जब भी जिए तो खुशी से जिए। सुधाकर गायकवाड़ और इनके साथ है विकास गायकवाड़, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दीक्षा बागमारे और शशंक बागमारे, ये लिखते हैं संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से। लिखते हैं हमें खूबसूरत गाने में शामिल करें, तो गाना तो जो बजेगा उसमें आप शामिल हो ही जाएंगे, कार्यक्रम में हमने आपको शामिल कर ही लिया है आपका नाम शामिल करके। रजौनी जिला महोबा बुंदेलगढ़ उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश, दिव्यांश बघेल और इनका परिवार। श्रीकांत पारिक लिखते हैं अच्छा कार्यक्रम, महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से श्रोता है उदय भान पाल। पक्षी प्रकृति की सुंदरता और पर्यावरण के संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, सुबह की मधुर चहचहाट खेतों और बागों में उड़ने वाले पक्षी केवल मन को आनंद नहीं देते बल्कि प्रकृति के रक्षक होते हैं। आज के समय में पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है जो चिंता का विषय है। पेड़ों की कटाई, जंगलों का नष्ट होना, जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पक्षियों का प्राकृतिक आवास खत्म हो रहा है। आपने बिल्कुल सही लिखा है, प्रकृति के साथ हमें अपना तालमेल बना कर रखना चाहिए। जो भी पशु और पक्षी ईश्वर ने पैदा किए हैं वो प्रकृति के अनुसार उसके लिए आवश्यक है। अगले श्रोता है नीतीश कुमार देवांगन और ये लिखते हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। श्री कृष्ण कहते हैं कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, कितना भी क्रोध करे, लेकिन तुम शांत रहो, जैसे गंदा पानी अपने आप बैठ जाता वैसे शांत मन में सच्चाई स्पष्ट दिखती है। विवाद में नहीं धैर्य में शक्ति है, प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो, हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिए जाते, कुछ उत्तर चुप रहकर दिए जाते हैं। याद रखो कि जो खुद शांत है उन्हें दुनिया की कोई भी हलचल हिला नहीं पाती। बिल्कुल सही लिखा है, अगर आप मन से शांत हैं तो फिर आपको कोई भी हिला नहीं सकता, और अपने मन का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके मन को कोई भी आए और हिला के चला जाए। जैसे कहते हैं कि मंदिर में जो घंटा होता है उसको हर कोई जो भी मंदिर में प्रवेश करता है वो बजाता है, लेकिन आप अपने मन को मंदिर का घंटा ना बनाए कि कोई भी आए और उसको बचा कर चला जाए। तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम का अंतिम कमेंट, और अब आपको चलते चलते सुनवाते हैं एक प्यारा सा

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM चूरू से कार्यक्रम दिल से दिल तक। हमारा अगला प्रसारण आप सुन पाएंगे आकाशवाणी मुंबई से, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का।
2: वक्त की मार, रिश्तों का सार। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं,

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव

गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सब

बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही हो जाएं।

स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है और अमित छोटा है, तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा, पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गाँव के मेले में भी घूम आते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने। और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था, हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य यह था, इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थ परता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी

पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी और जहाँ कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे और इसका प्रभाव पूरे

परिवार है, उसको देखना है, कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वही छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती। जमीन तो रहती ही है, पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा। हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है, और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम, अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला। कहां क्या अंधकार पनप रहा है, जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। और धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। रामनारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए। दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था। शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम बचा।

पूरा गांव गर्व करता था, वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ती जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम

और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया, ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को

अपने माता पिता से अलग हो गया, क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी, अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाए।

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की।

कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश माँ की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाते।

चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया। उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी, उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

दम चुम लूं या के आंखें बिछा दूं।

संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि

0: गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।
1: फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथ

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।

FM 107 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे आज के कार्यक्रमों का विवरण।

आप सुन रहे हैं हमारे आज के कार्यक्रमों का विवरण और उनके प्रसारण समय के बारे में। अभी थोड़ी ही देर बाद 11:05 पर श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। 12:00 गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सुरबहार। लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुनेंगे 12:30 पर। आज के कलाकार रहेंगे मुरली राजस्थानी और साथ ही आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 1:00। 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। हमारे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज आप सुनेंगे दोपहर 2:00। 2:15 पर श्रोता सुनेंगे दोपहर समाचार। 2:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा तराने नए पुराने।

शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी के साथ आरंभ होगी हमारी आज की दूसरी सभा। शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे।

6:05 पर श्रोता सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति फिल्मी गीत। संस्कृत में समाचारों के लिए समय है 6:20 का। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे 6:30 पर। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे 6:40 पर। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों के लिए समय है 6:45 का। 7:00 श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी।

7:30 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। 8:45 पर हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या होगी। तत्पश्चात न्यूज एट 9 आप सुनेंगे 9 बजे। 9:15 पर राजस्थानी लोक संगीत होगा। हमारे दिल्ली केंद्र से 9:30 पर आप सुनेंगे युवा भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात्रि 10 बजे। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे। 11:05 पर श्रोता सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
2: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: अंतराल के बाद श्रोता आप सुनेंगे चित्रपट संगीत की प्रस्तुति अलका याग्निक की आवाज में राज फिल्म से।

चित्रपट संगीत की प्रस्तुति अभी आपने सुनी कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में अंदाज फिल्म से। धड़कन फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे अलका याग्निक और

हम तुम्हारे हैं सनम, इस फिल्म का गीत श्रोता आप सुनेंगे अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की आवाज में। श्रोताओं, आप सुन रही हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

चित्रपट संगीत की ये प्रस्तुति अभी आपने सुनी सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में रेफ्यूजी फिल्म से। तलाश फिल्म का गीत श्रोता आप सुनेंगे अलका याग्निक की आवाज में।

चित्रपट संगीत की अंतिम प्रस्तुति श्रोता सुनेंगे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में ताल फिल्म से।

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरबहार।

अभी आप सुन रहे थे सुरबहार। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के कलाकार हैं मुरली राजस्थानी,

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: साइज को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित

श्रोता भी सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है, FM 100.7 MHz पर हम बोल रहे हैं। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग आज से भारत की 5 दिन की यात्रा पर हैं। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी भारत पहुंचा। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये भारत की पहली यात्रा है। वे आज सुबह बिहार के बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। वे कल नई दिल्ली में म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। उनका सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति यू मिन आंग की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों के और अधिक मजबूत तथा प्रगाढ़ होने की आशा है। म्यांमार भारत की पड़ोसी पहले, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में विशेष स्थान रखता है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी देश के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस होंगे। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जो आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल चौहान को आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विदाई समारोह में जनरल चौहान ने कहा कि तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सेवानिवृत्त होना उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। 4 दशकों से अधिक की सेवा के बाद जनरल चौहान ने अपने कार्यकाल को संतोषजनक और उत्कृष्ट बताया। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 25 मई से शुरू हुए अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई और पेयजल संरचनाओं का जीर्णोद्धार तथा श्रमदान के साथ जागरूकता आयोजन रखे जा रहे हैं। इसी क्रम में सरहदी जिले जैसलमेर में रिचार्ज शॉफ्ट संरचनाओं का लोकार्पण किया गया। इनके जरिए जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के लिए जागरूकता बढ़ाई गई। सवाईमाधोपुर के बाडूलास में गंभीर नदी पर बने एनीकट पर जल पूजन और पीपल पूजन का आयोजन हुआ। इसी तरह पाली जिले के सादड़ी में ऐतिहासिक प्रतापगढ़ बावड़ी पर भी कार्यक्रम रखा गया। जिले के सुमेरपुर में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने डायवर्जन चैनल का लोकार्पण किया। इस दौरान निकाली गई प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। वित्तीय सेवा विभाग ने लावारिस वित्तीय संपत्तियों से

0: संबंधित जानकारी लोगों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह PSBA के सहयोग से विकसित किया गया है। PSBA देश के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक केंद्रीकृत कंपनी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि पोर्टल वित्तीय प्रणाली से जुड़े ऐसे बैंक खातों, बीमा दावों, शेयरों, लाभांश और म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाता है जिनका कोई दावेदार नहीं है। कोटा जिले में पशुओं से इंसानों में फैलने वाली बीमारी ब्रुसेलोसिस का प्रकोप दिखाई देने पर चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। नगर निगम की बंधा गौशाला और दो निजी गौशालाओं की 11 गायों में इस रोग की पुष्टि हुई है। संक्रमित गायों को आइसोलेट किया गया है। नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर खुशाल सोलंकी ने बताया कि इस बीमारी से संक्रमित पशु का दूध पीने और इनके संपर्क में आने वालों में भी इनकी चपेट में आने की आशंका बनी रहती है। सूचना मिलने पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा टीम गठित कर स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की ओर से बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का विशेष अभियान शुरू हुआ। 29 जून तक चलने वाले अभियान के तहत 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को खुराक दी जाएगी। पाली में सभी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और जिला अस्पताल में अधिक से अधिक बच्चों को दवा पिलाने के इंतजाम किए गए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज 30 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। कल शाम मौसम में अचानक बदलाव के बाद उत्तर पूर्वी जिलों में तेज अंधड़, बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू और करौली सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। राजधानी जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक प्रदेश में मौसम का ये बदला हुआ मिजाज बने रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। समय 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है महिला जगत।

कार्यक्रम महिला जगत सुनने वाली सभी श्रोता बहनों का स्वागत है उनके अपने कार्यक्रम में। और आज उनके साथ बात करने के लिए, कुछ प्यारे प्यारे गीत सुनने के लिए, कुछ आपकी सुनने के लिए और कुछ अपनी सुनाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, उनकी सखी रेखा खंडेलवाल। स्वीकार कीजिए मेरा स्नेहिल नमस्कार।

इस बहुत ही प्यारे से गाने के बाद बहनों हम रुक करते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। बहनों हम में से बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जो नौकरी लग भी चुकी है, भले ही वो प्राइवेट सेक्टर में कर रही हो या गवर्नमेंट सेक्टर में कर रही हो, भले ही वो टीचिंग स्टाफ में आती हो।

या फिर कॉरपोरेट सेक्टर में कोई काम कर रही हो या क्लर्क की पोस्ट पे हो, पोस्ट चाहे कोई भी हो, काम चाहे उनका कोई भी हो, वे नौकरी करती हैं और उनका नौकरी करने का मकसद होता है अपने परिवार की आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना। आज की जो हमारी जीवन शैली है उसमें जिस तरीके से खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उसको देखते हुए और सुरक्षित भविष्य को बनाने के लिए आर्थिक स्थिरता को, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सुनिश्चित करने के लिए और खुद की मानसिक स्थिति और थोड़ी सी खुद की जो स्वतंत्रता है उसको सुरक्षित रखने के लिए अब महिलाएं भी घर के पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, मतलब नौकरी कर रही हैं। अगर महिलाएं नौकरी कर रही हैं तो भी वो कुल मिलाकर कमा ही रही हैं और वो घर पर ही लग रहा है। और अगर महिलाएं वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, मतलब घर पे पशुपालन है या खेती में सहयोग करना है या अपने हुनर के जरिए कोई कमाई करना है, चाहे वो सिलाई कढ़ाई बुनाई हो, चाहे वो पापड़ मंगोड़ी का काम हो या कोई और काम हो, कुल मिलाकर महिलाएं हर काम में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं ताकि परिवार की परेशानियों को सुलझाया जा सके, उनके संघर्षों को थोड़ा कम किया जा सके और बच्चों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी, आर्थिक परेशानी भविष्य में ना हो। इस चीज को लेकर अगर महिलाएं काम कर रही हैं तो महिलाओं को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, जबकि अप्रिसिएशन की जगह उनको मिलता क्या है, उनको मिलते हैं ताने। किस बात के उनको मिलते हैं ताने? इस बात के कि वो नौकरी पे जाती हैं, दो पैसे कमाती हैं, लेकिन पीछे से घर का काम यूं ही पड़ा रहता है। वो रिश्तेदारी नहीं संभालना जानती, वो घर परिवार को नहीं संभालना जानती, वो बाहर जाकर सिर्फ कमाना जानती है, वो घर पर टिकना नहीं जानती। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनसे हम बहनों को दो चार होना पड़ता है और ये जो बातें हैं वो हमारी मानसिक स्थिरता को कहीं ना कहीं टूटने के कगार पे ले आती हैं। वो काम जो हमने अपनी खुशी से घर वालों को सोच कर शुरू किया था वो काम छोड़ने का मन करता है, लेकिन हालात और कुछ घर की मजबूरियां हम बहनों की ऐसी होती है कि हम काम को छोड़ भी नहीं पाते हैं। यहाँ पर आकर हमारी लाइफ में ट्विस्ट आते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी नौकरी और हमारा घर दोनों का बैलेंस बना रहे। हमारे प्रश्न में ही हमारे सवाल का जवाब छिपा है कि अगर हम मर्जी से अपने घर का काम और अपनी नौकरी दोनों कर रहे हैं तो फिर हम इनमें संतुलन क्यों नहीं बना पा रहे। वही 24 घंटे बाकी किसी के और के पास भी है और वही 24 घंटे हमें भी मिलते हैं जो कि हम घर और नौकरी के बीच में दे देते हैं, फिर भी एक पिसने जैसी कंडीशन क्यों आ जाती है, क्यों थकान होता है, क्यों मन में एक भटकाव सा होने लगता है कि सब छोड़ छाड़ के कहीं चल देते हैं, लेकिन अगर कहीं चले जाने के बाद भी अगर सुकून नहीं मिला तो। इस सवाल का जवाब जरूर जानेंगे, पहले सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: बहनों, इस अंतराल से पहले हम बात कर रहे थे कि घर और नौकरी अगर हमारी जरूरत भी है और हमें करनी भी है, तो इसके बीच में हम अपने समय का संतुलन कैसे बनाएं।

संतुलन तो बनाना बहुत ज़रूरी है बहनों, क्योंकि अगर हम संतुलन बनाकर नहीं चले तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हम डिप्रेशन के शिकार हो गए और डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते कब हमें बहुत ज़्यादा मानसिक अस्थिरता की तरफ ले जाएगा। इसलिए घर और नौकरी के बीच संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। घर और नौकरी के बीच संतुलन बनाए रखने

रखना जरूरी है, और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए कोई जादुई छड़ी चलकर नहीं आएगी। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए आपको अपना दृष्टिकोण ही सकारात्मक और सही रखना होगा, और इसी से आप अपनी वर्क लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर सकती हैं। इसके साथ ही अगर आप अपने काम की प्राथमिकताएं तय कर लें तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब कि हर काम खुद करने की कोशिश हमेशा नहीं करनी चाहिए। चलो ठीक है, कोई काम जो आपके बगैर नहीं हो सकता आप कर रहे हैं, ठीक है। हम मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारी बहनें हैं उनकी मौजूदगी के बगैर संभव नहीं है, लेकिन हर काम के जो है वो समय सीमा भी तय होनी चाहिए, और उन कामों में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम कौन सा है उसे पहले किया जाना जरूरी है। और ऐसे कामों की अगर लिस्ट बना ली जाए तो हमारा बहुत सारा वर्क लोड जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हम महत्वपूर्ण काम पहले करते हैं, और जो काम कम महत्व के हैं उनको हम कुछ समय के लिए टाल भी सकते हैं, या फिर जब हमारा वीकेंड हो या जब हमें समय मिले तब हम उनको कर सकते हैं, ताकि हमारी जो मन में शांति है वो भी बनी रहे और हम इधर उधर भटकाओं में भी ना भटकें। अपने समय की सीमाएं बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर काम के घंटे निश्चित कर लेते हैं और हम उनका सख्ती से पालन कर लेते हैं, एक डेडलाइन डिक्लेयर कर लेते हैं, तो ये हमारी मजबूरी नहीं होती, ये हमारा प्रोफेशनलिज्म दिखाता है कि हम अपने काम को लेके कितना ज्यादा व्यवहारिक हैं, कितने ज्यादा समर्पित है। और यही एक जो समर्पण की बात है ये काम को लेकर तब आपको नजर आती है जब आप अपने समय की सीमाएं निर्धारित करते हैं। अपने काम को लेकर समय की सीमाएं जरूर निर्धारित कीजिए। इसके साथ ही ना कहना जरूर सीखिए। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकती, ना ही घर पर और ना ही आपके वर्क प्लेस पर। इसलिए जब आपको पता है कि आपके पास पहले से ही बहुत सारा काम है और आपकी क्षमता से ज्यादा काम आपको दिया जा रहा है, तो विनम्रता से उस काम के लिए ना कहना सीखें। ना कहना गलत नहीं होता, कई बार ये हमें मुश्किलों में फंसने से बचा लेता है, और काम बिगड़ जाए इससे बेहतर है कि हम पहले ही ना कह दें। और ना कहना कमजोरी की निशानी नहीं है, कई बार ये हमें सबसे स्ट्रॉन्ग दिखाता है, तो ना कहना भी जरूर सीखें। हम महिलाएं घर के काम के लिए किसी की भी मदद नहीं लेना चाहती, भले ही थकान से जान ही क्यों ना हलकान हो जाए, पर यही तो गलत बात है। घर के कामों में अकेले थकने की बजाय परिवार के सदस्यों की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, और इसी तरह जरूरत पड़ने पर कार्यस्थल पर अगर आपको लगे कि आपको मदद की जरूरत है तो आपके कलीग्स जो भी हैं उनकी मदद आप ले सकती हैं। रोजमर्रा की भागदौड़ में स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, खुद के लिए भी थोड़ा सा समय निकालें, अपनी पसंदीदा हॉबी को पूरा करें, व्यायाम करें, ध्यान करें, और इससे आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी और जो आपकी शारीरिक ऊर्जा का जो स्तर है वो भी बना रहेगा। और हाँ बहनों, एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि रोजाना कुछ समय के लिए डिजिटल दुनिया से ब्रेक लेकर अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम जरूर स्पेंड कीजिए, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, और जो वक्त है वो यही है अपने आने वाले कल के लिए यादें बनाने का, और यादें तभी बनेंगी जब आप साथ बैठेंगे।

इस बहुत ही प्यारे से गाने के बाद बहनों फिर से हम रुख करते हैं अपनी चर्चा की ओर। और बहनों, हमारा प्रोग्राम बेसिकली बेस्ड होता है हम महिला बहनों के लिए, हमारी बहनें जो अपने प्रति समर्पित नहीं होती हैं।

अपने परिवार के प्रति समर्पित होती हैं, वो अपने रिश्तों के प्रति समर्पित होती हैं, वो उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होती हैं, बशर्ते उन्हें अगर अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़े तो वो एक बार भी हिचकिचाती नहीं है, सोचती नहीं है। और यही आकर थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है कि क्या ये जरूरी है कि एक महिला सबके लिए सब कुछ करे और खुद को भूल जाए। जब ये बात सामने आती है तो हम देखते हैं कि हमारी बहुत सी बहनें हैं जिनका स्वास्थ्य उन्हें काम करने की मंजूरी नहीं देता, फिर भी वे निरंतर काम करती रहती हैं ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जब हम बात करते हैं महिला के स्वास्थ्य की, तो महिला का स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये उतना ही ज़रूरी है जितना घर के किसी और सदस्य का स्वास्थ्य ज़रूरी है। उसको भी उतना ही पोषण या पौष्टिक खाना मिलना चाहिए जितना कि किसी बढ़ते बच्चे को, बुजुर्ग को या कमाने वाले और सदस्य को मिल जाए। हम महिलाएं परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं, पोषण से भरपूर भोजन भी करवाती हैं, पर जब बात खुद की आती है तो हम अपने कदम पीछे ले लेती हैं, टाल मटोल करती हैं। और हम में से बहुत सारी बहनों का तो ये मानना है कि उन्हें न तो पोषण की दरकार है, न ही स्वास्थ्य संबंधी किसी जांच की दरकार है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो डॉक्टर के पास जाने में भी हिचकिचाती है। वो अपनी थाली में कुछ भी जो बच जाए, अगर रात का भी बचा हुआ है तो वो उसे खाना ही प्रेफर करती है बजाय ताज़ा खाने के, जबकि खाना तो ताज़ा ही खाना चाहिए। हाँ, कुछ मामलों में हो सकता है कि हाँ भाई ठंडा बच गया, फेंका नहीं जाना चाहिए, तो सब परिवार वाले मिलकर उस खाने को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी एक के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वही रात का बचा हुआ खाना खाए। ऐसा तो उसकी थाली में कभी पोषण जाएगा ही नहीं, ऐसे तो उसे कभी पौष्टिकता मिलेगी ही नहीं, और ऐसे तो उसका जो शरीर है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा। और इस तरीके की अगर कोई बहन गर्भवती होती है, गर्भ धारण करती है, तो वो जो बच्चा जन्म लेगा वो निसंदेह कमजोर ही पैदा होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो शुरुआत में तो हमें लगती है कि कम है, लेकिन उनके जो भविष्य के जो हम परिणाम देखते हैं वो बेहद खतरनाक होते हैं। तो क्यों भाई, हमें भी पौष्टिकता की जरूरत है, हम भी इंसान हैं, हमारा भी स्वस्थ रहना जरूरी है जितना कि किसी और का है। तो जब तक हम जिएंगे, अपनी जिंदगी को खुलकर तो जी पाएंगे, और उसे जीने के लिए हमारे स्वास्थ्य का, हमारे शरीर का हमारा साथ देना भी जरूरी है। मैं ये बात फिर कह रही हूँ कि कोई भी हो, बड़ा छोटा, स्त्री पुरुष, बुजुर्ग या वृद्ध या कोई भी हो, हर एक के शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक हम जीवित हैं, ये शरीर ही हमारा साथ देता है। बाकी रिश्तेदारी, दोस्त या परिवार सब बाद में आते हैं। इसलिए स्वास्थ्य और पोषण हर किसी की अपनी प्राथमिकता

0: हुजूर
1: जी हुजूर
2: हम वैसी ही नजर।

इस अंतराल के बाद बहनों फिर से हम रुक करते हैं हमारे बहनों के स्वास्थ्य संबंधी बात की ओर। और महिलाएं जो हैं अपनी स्वास्थ्य का ध्यान क्यों नहीं देना चाहती, जो ये एक जो टैबू है या यूं कहे कि एक मिथ है, अवधारणा जो बनी हुई है हमारे समाज में कि महिलाएं तो जन्मजात ही स्वस्थ होती हैं, इन्हें तो अगर किसी भी तरीके से रख लिया जाए रह जाएंगी, इनके ऊपर ध्यान देने की क्या आवश्यकता है? तो बहनों, ध्यान देने की हर बच्चे के लिए आवश्यकता है। हर बच्चे को पोषण की उतनी ही जरूरत होती है जितनी की किसी और को। तो बच्चे के रूप में अगर एक लड़की है तो भी उसे पोषण की जरूरत है, और अगर एक महिला है या एक बुजुर्ग स्त्री है तो उसे भी पोषण की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महिला का स्वास्थ्य और पोषण एक दूसरे के पूरक है। और स्वस्थ महिला ही एक सशक्त समाज की नींव का आधार बनती है, इसलिए भी महिलाओं का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आने वाले कल के स्वस्थ भविष्य का निर्माण करती है। इसलिए बहनों को अपने भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हीमोग्लोबिन का स्तर है इसको बनाए रखने के लिए, और एनीमिया से बचाव के लिए पालक, चुकंदर, दालें, खट्टे फल, इनका सेवन जैसे बाकी सब करते हैं महिलाओं को और बेटियों को भी करना चाहिए। हड्डियों की मजबूती के लिए और मेनोपॉज के बाद जो ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों की जो कमजोरी वाली समस्या हो जाती है, इसके खतरे को कम करने के लिए दूध, दही और पनीर का सेवन भी उसी अनुपात में कीजिए जिस अनुपात में बाकियों को आप करवाती हैं। शरीर की कोशिकाओं का निर्माण जब तक हम जीवित रहते हैं चलता रहता है, और उसके लिए ऊर्जा की भी जरूरत होती है, तो उसके लिए आपको दालें और सोयाबीन का सेवन भी करना चाहिए। इन चीजों में कहीं कोई कोताही न हो तो ही बेहतर है। यह तो बात हुई पोषण की, परंतु पोषण भी प्रत्येक अवस्था के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि किशोर अवस्था में जो हमारी बेटियां होती हैं, मासिक धर्म की शुरुआत, जैसे कि हम पिछले कुछ दिन से चर्चा कर रहे हैं मासिक धर्म के बारे में, मासिक धर्म की शुरुआत पहले का जो समय था वो इस शुरुआत का माना जाता था 17 से 18 साल की जो हमारी बहन बेटियां थी, मासिक धर्म की शुरुआत उनको उस वक्त हुआ करती थी, क्योंकि उनके खान पान में बहुत ज्यादा नरमी बरती जाती थी। मेल न्यूट्रिशन नहीं होता था, लेकिन फिर भी उनके खान पान में मसालों की अधिकता, तेलीय चीजों की अधिकता नहीं होती थी, जिसकी वजह से उनके रक्त में थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी जो ठंडक है वो रहती थी, जिसकी वजह से उन्हें मासिक धर्म 17-18 साल की उम्र के बाद ही होता था। फिर समय बदला, मौसम बदला, खान पान बदला, यह उम्र 14-15 साल की हो गई, और अब वर्तमान समय में मासिक धर्म की जो हमारी बेटियों की उम्र है वो 8 से लेके 12 साल तक की है। मतलब हम देखें कि 8 साल की बच्ची को भी मासिक धर्म आ रहा है, 10 साल की को भी आ रहा है, और 12 साल की बच्ची को भी मासिक धर्म आ रहा है। लेकिन जब ये शुरू हो जाता है तो इसे रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन इसके लिए शरीर में आयरन की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसलिए इस दौरान पौष्टिक आहार, शारीरिक विकास और ये जो एनीमिया है इससे बचाव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर आपके घर में, आपके आसपास में कोई बहन, कोई बेटी ऐसी है जिसे अभी फिलहाल ही पीरियड्स आने शुरू हुए हैं, तो उसके खान पान का खास ध्यान रखिए, उसे अपनी स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए भी कहिए, साथ ही भरपूर पानी पीने के लिए भी कहिए, क्योंकि ये भी हमारे दैनिक जीवन की जरूरतों में

गर्भावस्था और स्तनपान के समय भी एक महिला को पोषण और कैलोरी की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, क्योंकि एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है और एक स्वस्थ शिशु ही एक सशक्त समाज का निर्माण करते हैं। मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति की जो अवस्था होती है, इसमें शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। इसी की वजह से मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो कभी कुछ खाने की इच्छा करती है, कभी कुछ खाने की इच्छा करती है, लेकिन कभी कुछ की इच्छा को छोड़कर फाइबर से भरपूर आहार लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे हमारा वजन नियंत्रित रहता है। इसके अलावा नियमित स्वास्थ्य जांच, पर्याप्त नींद, पर्याप्त पानी का सेवन और व्यायाम को भी अपने जीवन में शामिल करना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है बहनों कि हमारे देश में महिलाओं और बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए भारत सरकार अनेक योजनाएं चलाती हैं, जिनमें राष्ट्रीय पोषण मिशन और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजनाएं भी प्रमुख हैं। इन योजनाओं का भी लाभ लिया जा सकता है।

बिल्कुल कोमल नहीं होती है नारियां, बहुत मजबूत होती हैं, सशक्त होती हैं। इसीलिए तो सृष्टि का संचालन करने के लिए शक्ति का रूप धारण करती हैं, और इसीलिए ये जो एक पीरियड्स वाली जो कंडीशन है, यह इसीलिए दी गई है ताकि हम सृष्टि की संरचना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। और इसके लिए हमें अपनी ये जो बेटियां बड़ी हो रही है उन्हें शुरू से समझाने की ज़रूरत है कि यह हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, और अगर यह हो रहा है तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी क्यों ज़रूरी है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बच्चियां हैं, समझ जाती हैं।

तो बहनों, इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम से दीजिए विदा अपनी सखी रेखा खंडेलवाल को। और हाँ, आप जैसी भी हैं बहुत अच्छी हैं, और इस एक चीज को मानकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर दीजिए। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज। 2:15 पर श्रोता सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: India currently lead the series 1-0 after a commanding 38-run victory in the opening match in Chelmsford on Thursday. And in cricket, Gujarat Titans stormed into the final of the IPL 2026 with a commanding 7-wicket victory over Rajasthan Royals in qualifier 2 at New Chandigarh last night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Indian Army prepared for Operation Sindhu 2.0, if the situation warrants, says Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi. Myanmar President U Min Aung Hlaing begins his 5-day India visit with prayers at Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar. Karnataka Congress Legislature Party to meet in Bangalore this afternoon to elect its new leader. At least 7 people killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning across Bihar. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth says Washington is prepared to resume military action against Iran if efforts to reach a deal fail. And in women's cricket, India to take on hosts England in second T20 international of 3-match series in Bristol today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति U Min Aung Hlaing 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
4: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र

0: सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ओ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
2: आज डी के शिव कुमार राज्यपाल तावर चंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7 लाख रुपए का

जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवार

0: हेलो दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.7 एफएम, जहां हम लेकर आए हैं आपका यूथ स्पेशल प्रोग्राम युववाणी, जहां आज आप सुन रहे हैं आपके आरजी दोस्त भावना को
1: और साथ में आप सुनेंगे आपकी रेडियो दोस्त कोमल दैया को। तो युववाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा
0: नमस्कार।

0: जी स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस खूबसूरत सी शाम में। जैसे कि इस खूबसूरत सी शाम में हम आ गए हैं आपसे जुड़ने और लेकर आपका एक खूबसूरत सा प्रोग्राम। शनिवार का खास सेगमेंट होता है युवा पसंद, जहां हम आपको सुनवाते हैं आप ही की पसंद के गाने। और आज मौसम की डिमांड को देखते हुए आप सभी श्रोताओं के मेल जो हमें मिले हैं इतने प्यारे प्यारे गानों के साथ, और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हमने इसी गाने से की है, यानी कि हमारे श्रोता साथी की पसंद से की है। तो बताइए कोमल, हमारे पहले जो लिसनर है वो कौन है और कौन सा गाना और कौन सी मूवी से भी हमने सुना है?
1: जी बिल्कुल, अभी जो हम गाना सुन रहे थे फिल्म सीता और गीता से, हवा के साथ साथ घटा के संग संग। इस गाने की फरमाइश जो है वो हमें करते हैं नेकी राम रेवाड़, संतोष ममता कल्पेश, शैलेश रेवाड़, जो हमें लिखते हैं गांव सहसवास जिला झुंझुनू से।
0: जी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आइए सुनवाते हैं आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे, 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज का हमारा खास सेगमेंट है युवा पसंद, जिसमें अभी अंतराल से पहले हम जो गाना सुन रहे थे, फिल्म मासूम से ये गाना हम सुन रहे थे और इस गाने की जो फरमाइश है वो हमें करते हैं भंवर सिंह मीणा, तन्मय मीणा, जो हमें लिखते हैं हमीरी कला झुंझुनू से, साथ ही महेश जानू जो हमें लिखते हैं बहादुर वास झुंझुनू से, सुखजिंदर बुगालिया जो हमें लिखते हैं चिड़ावा झुंझुनू से, बलजीत कांटीवाल जो हमें लिखते हैं विदासर झुंझुनू से, राजा नंदवानी, रजत, रोहित, केशव, मुकुल, मनीष, सुमित, साक्षी और किरण नंदवानी जो हमें लिखते हैं नई सड़क चूरू से, साथ ही जगदीश मंडल, अभिषेक मंडल हमें लिखते हैं गुदरी बाजार चूरू से और इसी के साथ राकेश कुमार हमें लिखते हैं दुधवा मीठा चूरू से, अरविंद खारेड़िया हमें लिखते हैं लादड़िया चूरू से, निशांत फुंडे, ओम प्रकाश, मानसी, चेतन, गोंदिया जो हमें लिखते हैं महाराष्ट्र से।
8: जी साथ ही कुछ श्रोता जो हम शामिल करना चाहेंगे इस गाने में जो हमारे साथ जुड़े हैं, वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू, टोमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत

0: श्रोताओं, अभी एक खूबसूरत सा गाना आप सुन रहे हैं आन मूवी से, और कार्यक्रम चल रहा है युवा पसंद, जिसमें हम शामिल कर रहे हैं हमारे युवा श्रोताओं की जो है पसंद। अभी हमने ये गाना सुना जब तक रहेगा। इस गाने को पसंद किया है हमारे श्रोता साथी सुभाष चंद्र जी, जो हमें लिखते हैं चुनाराम की ढाणी तारानगर से।
1: जी बिल्कुल, और इसी गाने की फरमाइश में हम जो है नाम लेना चाहेंगे मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति प्रयाग चौधरी, देविका चौधरी, जो है कि इन्होंने अपनी पसंद का गाना जो है वो हमने सुनवाया। और साथ ही दोस्तों एक बात ये भी है कि अगर आप भी अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं, हमारे युवा पसंद सेगमेंट में शामिल होना चाहते हैं, तो आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस रहता है youthexpresschuru@gmail.com। और इसी के साथ आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आप 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है वो आप हमें ईमेल कीजिए, ताकि प्रोग्राम में जो है वो आपको हम शामिल

0: जो कि हमें लिखते हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से।
1: जी बिल्कुल, और साथ ही गांव फरासी जिला हिसार से हमें लिखते हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। आप सभी का प्रोग्राम में बने रहने के लिए शुक्रिया। सुनते रहिए अपने फरमाइशी गीत।

0: जी दोस्तों, अभी हम गाना सुन रहे थे फिल्म आपका सुरूर से। इस गाने की जो फरमाइश है वो हमें करते हैं फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसला चूरू से संदीप सिंह सोनग्रा, पराची सोनग्रा, सोमल सोनग्रा, कार्तिक सोनग्रा और सोनग्रा परिवार। साथ ही हमें लिखते हैं ददरेवा से गंगा, शिम्पा, उषा, अमनी, अक्षय और हासिम कुरैसी। साथ ही सहसवास जिला झुंझुनू से हमें लिखते हैं नेकी राम रिवार्ड, मेलूसर बिकान सरदार सर में से हमें लिखते हैं अंबिका भाटी लकी, और न्यांगली राजगढ़ से हमें लिखते हैं संदीप स्वामी, रामसरा चूरू से हमें लिखते हैं सचिन चौहान, सिरधोरा रतनगढ़ से हमें लिखते हैं प्रकाश जी राणा।
1: जी साथ ही साथ मेल के जरिए हमारे साथ जुड़ने वाले अगले श्रोता है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। इस कार्यक्रम में हम ये फरमाइशी जो नगमे है वो हम हमारे श्रोता साथियों की जो पसंद है वो सुन रहे हैं। आइए सुनवाते हैं आपको अगली पसंद।

जी श्रोताओं, इस गाने की पसंद हमें लिख भेजी है रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इरफान खान, इमरान खान, जिशान खान, जो हमें लिखते हैं हनुमानगढ़ टाउन से। फिल्म फना से ये गाना हम सुन रहे हैं और खूबसूरत सी आवाज है शान और कैलाश जी की। प्रोग्राम यूं ही जारी है फरमाइशी नगमों का, कार्यक्रम में आनंद लीजिए इन प्यारे प्यारे नगमों का।

0: दोस्तों बरसात मूवी से हम ये गाना सुन रहे हैं। लिखने वाले हमें छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा
1: जी। साथ ही साथ एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से, अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, जावेद, सूरज अख्तर, जासमीन, सकीला, सना, समा, हीना, राजिया।

जी दोस्तों, फिल्म गीत से हम ये गाना सुन रहे थे। इस गाने की फरमाइश जो है वो हमें छत्तीसगढ़ से करते हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। आप सभी का प्रोग्राम में ईमेल करने के लिए शुक्रिया और बने रहिए हमारे साथ खास सेगमेंट युवा पसंद में और सुनते रहिए अपने फरमाइशी गीत।

जी श्रोतो, बाजीगर मूवी से ये गाना आप सुन रहे हैं। और इस गाने के जो सिंगर हैं वो है विनोद राठौड़ और अलका याग्निक जी। लिखने वाले हैं हमें गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: सब है पता, सुनता है तू मन की सदा।
1: जी श्रोता, ये था हमारा आज का कार्यक्रम युवा पसंद, फरमाइशी नगमों पर आधारित। उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। और अगर आप भी हर शनिवार हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए हमारा एड्रेस रहेगा youthexpresschuru@gmail.com।
2: जी दोस्तों, फिलहाल प्रोग्राम से जाने की इजाजत दे कोमल दैया को,
1: आपकी दोस्त भावना को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं के साथ उनका कार्यक्रम युववाणी FM 110.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5:55 हो चुके हैं। आप जानेंगे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष रहे कार्यक्रम और

शाम 6:10 पर आप सुन पाएंगे देशभक्ति फिल्मी गीत और 6:20 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार। शाम 6:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:45 पर आप सुन पाएंगे जयपुर केंद्र से ही जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुन पाएंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हमारे जयपुर केंद्र से रिले होंगे।

शाम 7 बजे आप सुन पाएंगे किसान भाई बहनों के साथ उनका कार्यक्रम किसान वाणी। चर्चा होगी मौसम आधारित कृषि सलाह और पशुपालन में नस्लों के महत्व के बारे में। साथ ही आपको सुनवाए जाएंगे लोकगीत और लोक भजन। शाम 7:30 पर आप सुन पाएंगे राजस्थानी लोक संगीत।

रात्रि 8 बजे आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे गुलदस्ता। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली के अंदर से पहले समाचार संध्या, और रात्रि 9 बजे आप सुन पाएंगे न्यूज एट 9। रात्रि 9:15 पर एक बार फिर आप आनंद ले पाएंगे राजस्थानी लोक संगीत का। 9:30 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम युवा भारती। 10 बजे आप सुन पाएंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा। 11 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में, और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। अभी आपने जाना कार्यक्रम विवरण। FM 110.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

श्रोताओं, पर्यावरण के संतुलन के लिए हमें अधिकाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका पोषण और संवर्धन

FM 107.7 MHz पर आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और 6 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी है। अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील

0: इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति फिल्मी गीत। FM 110.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार। तदुपरांत 6:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। कर्णाटके कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे विधायक दलस्य नेतुः चयनाय उपवेशनं प्रवर्तते। म्यांमारस्य राष्ट्रपतिः मिन आंग लाइंग इत्यसौ अद्य पञ्चदिवसीय भारतयात्रायै बिहारस्य गयां सम्प्राप्तः। तेन महाबोधिमन्दिरस्य दर्शनं कृतम्। ऋतुविज्ञानविभागेन उक्तं यत् वायुमण्डलीय परिस्थितिभिः अनुमीयते यत् दक्षिण पश्चिम प्राविट आगामिषु चतुर्पञ्च दिनेषु केरलस्य तमिलनाडोः च कतिपय भागेषु आगमिष्यति। अमेरिकायाः रक्षामन्त्री पीट हेक्सेत् इत्यसौ अवोचत् यत् यदि सन्धेः प्रयासाः विफलाः भविष्यन्ति चेत् अमेरिकायाः सेना ईरानं विरुध्य सैन्यकार्याचरणं विधातुं पूर्णरूपेण सन्नद्धा वर्तते। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायकचक्रे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। कर्णाटके कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे विधायक दलस्य नेतुः चयनाय उपवेशनं प्रवर्तते। निवर्तमान मुख्यमन्त्रिणः सिद्धारमैया वर्यस्य त्यागपत्रं राज्यपालेन थावरचन्द गहलोतेन पूर्वमेव स्वीकृतम्। उपवेशनस्य अनन्तरम् अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी इत्यस्य सचिवः रणदीप सिंह सुरजेवाला वार्ताहरान् सम्बोधयिष्यति। अस्माकं वार्ताहरेण सूचितं यत् अस्मिन् उपवेशने डीके शिवकुमारः औपचारिकरूपेण विधायकदलस्य नेता चयनितो भविष्यति। इतः पूर्वम् अपि डीके शिवकुमारः राज्यपालम् अमिलत्। उपवेशनस्य अनन्तरं प्रशासनस्य रचनायै अपि सः राज्यपालाय प्रतिवेदनं दास्यति। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णवः अद्य नोएडायाः सूरजपुरस्थितस्य लोहुम इति समवायस्य भ्रमणम् अकरोत्। अयं समवायः महत्वपूर्ण खनिनां उन्नत सामग्रीणां च उत्पादनं विदधाति। अत्र अवसरे श्री वैष्णवः अवोचत् यत् लिथियम बैटरी स्थायी चुंबक इत्येतौ आधुनिक प्रौद्योगिक्यां महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयतः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः परिकल्पना वर्तते यत् एतेषां निर्माणं भारते स्यात्। एतेषां प्रौद्योगिक्याः विकासः स्वदेशस्तरे भवेत्। श्रीवैष्णवेन उक्तं यत् अस्याः परिकल्पनायाः अनुरूपं लौहं नामकेन समवायेन सफलतापूर्वकं जटिल प्रौद्योगिकी विकसिता।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: म्यांमारस्य राष्ट्रपतिः मिन आंग लाइंग इत्यसौ अद्य पञ्चदिवसीय भारतयात्रायै बिहारस्य गयां सम्प्राप्तः। तेन बोधगया स्थितस्य विश्वप्रसिद्धस्य महाबोधिमन्दिरस्य दर्शनं विहितम्। राष्ट्रपतिना तत्र बोधिवृक्षस्य अधः प्रार्थना अपि कृता। अत्रावसरे म्यांमारस्य राष्ट्रपतिना बकराऊर स्थिते ऐतिहासिके सुजाता मन्दिरे शिरं नत्वा बोधगया स्थितस्य बर्मी मठस्य यात्रा कृता। राष्ट्रपतिना सह वरिष्ठाधिकारिणः बौद्धप्रतिनिधयः उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अपि अवर्तत। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। ऋतुविज्ञान विभागेन उक्तं यत् वायुमण्डलीय परिस्थितिभिः अनुमीयते यत् दक्षिण पश्चिम प्राविट आगामिषु चतुष्पञ्च दिनेषु केरलस्य तमिलनाडोः च कतिपय भागेषु आगमिष्यति। अरब सागरे बंगाल खात्यां लक्षद्वीपे कन्याकुमार्यां च प्राविट अग्रे समेधते। ऋतुविज्ञान विभागेन केरलस्य अष्ट जनपदेषु अद्य प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं विधाय पीतवर्ण संचेतना प्रसारिता। ऋतोः प्रतिकूलता कारणेन जून मासस्य तृतीय दिनं यावत् मत्स्यजीविनः केरल लक्षद्वीप तटयोः समुद्रे उद्यमं न कुर्वन्तु इति परामर्शः अपि प्रदत्तः। सेना प्रमुखः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी अवोचत् यत् भारतीय सशस्त्र बलानि उच्चस्तरीय सतर्कतायां विद्यन्ते। आवश्यकता विद्यते सति ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इति सिंदूराभियानस्य द्वितीय चरणाय सन्नद्धानि सैन्यबलानि वर्तन्ते। पुणे नगरस्य खडकवासला स्थितायां राष्ट्रीय रक्षा अकादम्यां स्नातकान् सार्धैकशततमस्य दलस्य पासिंग आउट परेड इति प्रयाणं सम्बोधयता जनरल द्विवेदिना उक्तं यत् सिन्दूराभियाने दृढसंकल्पेन प्रत्युत्तरप्रदानस्य क्षमता प्रदर्शिता। तेनोक्तं यत् एतत् अभियानम् इदानीम् अपि सन्ततं प्रवर्तते। जनरल उपेदी अवोचत् यत् सिन्दूराभियाने भारतीय सैन्यबलानां मध्ये तारतम्यम् अवलोकितम्। सममेव वयं भविष्यकालाय आत्मानं सन्नद्धं कुर्महे। सेनाप्रमुखेण स्नातकाः व्यावसायिकनेतृत्वस्य राष्ट्रसेवायाः च सर्वोच्चमानकान् यथावत् प्रवर्तितुम् आकारिताः।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार और आम जन के बीच की कड़ी बताया। और प्रदेश में आज दूसरे दिन भी धूल भरी आंधी का दौर जारी, सीमावर्ती इलाकों में रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ, और अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। वे आज पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जनरल द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, यह अभियान अब भी जारी है। जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेट

0: के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान को खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ने वाला एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाना जाना चाहिए। श्री चौहान आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचाना है। केंद्रीय मंत्री ने अभियान के तहत पंचायत स्तर पर मशीनों के वितरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लाभों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून तक देश भर में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों के साथ न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और पारदर्शी तरीके से ही कराए जाते हैं। व्यास नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। PM स्वनिधि योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1 जून से जयपुर में शिविर लगाए जाएंगे। 3 दिन चलने वाले इन शिविरों में पात्र लाभार्थियों को द्वितीय ऋण की किश्त स्वीकृति और वितरित की जाएगी। ये शिविर जयपुर नगर निगम और एक निजी बैंक के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे। इसे स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके व्यवसाय के विस्तार में मदद मिलती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी बताया है। श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन के महाअधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता में भी नगरपालिका कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है। श्री शर्मा ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है।
1: मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप वो कड़ी हैं, तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हमारी योजनाओं का लाभ भी मिले और हमारे माध्यम से कोई भी हमारा परिवार का भाई, कोई भी कर्मचारी, अगर उसको किसी तरह की परेशानी हो तो उसका समाधान करने का काम भी आपका है। नगरपालिकाओं के कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, अग्निशमन कर्मचारी हो, जलापूर्ति कर्मचारी हो, ये दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहते हैं।

0: मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने में भी सभी की भागीदारी को आवश्यक बताया। महाधिवेशन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। राज्य में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के डी रेगुलेशन फेज 1 के तहत किए जा रहे सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि राज निवेश पोर्टल के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाकर समयबद्ध निस्तारण के प्रयासों से राजस्थान निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है। अप्रैल 2026 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राज निवेश पोर्टल पर प्राप्त 9000 आवेदनों में से 6000 से अधिक आवेदनों को मंजूरी दी गई है। आवेदनों को मंजूर करने के मामले में राज्य में जयपुर जिला पहले स्थान पर रहा, जहां लगभग 2000 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1300 से अधिक आवेदन स्वीकृत हुए। पुलिस मुख्यालय ने पुलिसिंग में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 123 पुलिस कार्मिकों को महानिदेशक पुलिस डिस्क और प्रशस्ति रोल देने की घोषणा की है। अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, प्रशासन तथा उत्कृष्ट पुलिस सेवा के लिए चयन समिति की अनुशंसा पर इस वर्ष कुल 123 अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन किया गया है। इनमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण HGR सुहास, पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह, राहुल प्रकाश, परिश देशमुख, पुलिस उप महानिरीक्षक जय यादव, मनोज कुमार और शांतनु कुमार सिंह के नाम शामिल हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सिरोही जिले के एक विश्वविद्यालय में योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया। इसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, योग साधकों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया तथा योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की शपथ ली। नागौर शहर के पास जोधपुर बीकानेर मार्ग पर आज दोपहर एक कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा डुकोसी और राजुवास गांव के पास हुआ। दुर्घटना में कार में सवार 2 महिलाओं और एक बच्चे सहित 4 की मौत हो गई। सभी मृतक जोधपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रदेश में धूल भरी आंधी का दौर आज भी जारी रहा। सीमावर्ती और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आज दोपहर बाद अचानक आए रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर जिलों में अचानक बदले मौसम से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेतीले अंधड़ की शुरुआत हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर क्षेत्र से हुई, जिसके बाद इसका प्रभाव आसपास के जिलों तक फैल गया। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि दोपहर बाद आए रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है।
1: चूरू में आज अचानक मौसम में बदलाव आया है। दोपहर पहले यहां तेज धूप गर्मी का असर रहा, जिससे आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और तेज अंधड़ आया। तेज रफ्तार से हवाएं चली, जिससे लोगों के टिन सेट उड़ गए हैं। तेज अंधड़ से पेड़ पौधे भी काफी टूटकर नीचे गिर गए। गांव में अच्छी बारिश हुई है, साथ ही चूरू में चने के आकार के ओले गिरे। बारिश होने से लोगों को गर्मी में थोड़ी राहत मिली है। वहीं तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: प्रदेश में कई स्थानों पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इस दौरान कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए और बिजली के पोल धराशायी हो गए। राजधानी जयपुर में भी शाम को बादल छाए रहे, बिजली कड़कने के साथ ही धूल भरी आंधी चली और कहीं कहीं बारिश हुई। कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होने की सूचना है। पिछले 2 दिनों से जारी आंधी बारिश से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज करीब 30 जिलों के लिए आंधी बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि होने के आसार जताए हैं। केंद्र ने आंधी और तेज हवाओं, बिजली चमकने के साथ लोगों से सतर्कता बरतने की सलाह दी है। आंधी बारिश का ये दौर अगले 3-4 दिन जारी रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का पहला चरण पूरा हो गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भवन का नवीनीकरण, प्रवेश और निकास मार्गों का पृथक्करण, नई पार्किंग व्यवस्था, बुकिंग कार्यालय और रिटायरिंग रूम का उन्नयन किया गया है। इस काम में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा भारतीय सशस्त्र बल आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार और आमजन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। और प्रदेश में आज दूसरे दिन भी धूल भरी आंधी का दौर जारी, सीमावर्ती इलाकों में रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से जालौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख कप्तान खान कलर ने तैयार किया है। जालौर जिले को बीते महीने महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। वहीं भीषण गर्मी के बीच मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने जिले का दौरा कर आम जन के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले दिनों जालौर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिले में रात्रि विश्राम कर चौपाल लगाई। पंचेरी गांव में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से संवाद किया और सरकार की योजनाओं का धरातल पर फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने उनकी सरकार और केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए आम जन से इनका अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं और लाभार्थियों से संवाद कर उनसे सफलता की कहानियों को सुना। उन्होंने गांव का पैदल भ्रमण कर जायजा लिया और लोगों के साथ चाय पीकर चर्चा की। ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसानों और पशुपालकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश को मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करने के लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, विधायक छगन सिंह राजपुरोहित और जीवाराम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जालौर को दिल्ली से सीधा रेल सेवा से जोड़ने की लंबे समय से चली आ रही जिलेवासियों की मांग बीते दिनों पूरी हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में जालौर से होकर गुजरने वाली दिल्ली भुज एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की। उन्होंने जालौर पहुंचकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस गाड़ी का जिले के रानीवाड़ा, मारवाड़, भीनमाल, मोदरान और जालौर में ठहराव होगा। रोजाना चलने वाली इस गाड़ी से जालौर वासी अब जयपुर और दिल्ली से सीधे जुड़ेंगे। वहीं गुजरात के भरूच, अंजार और गांधीधाम तक भी सीधी पहुंच हो सकेगी। गाड़ी की शुरुआत होने से आमजन में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जिले में इन दिनों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। गंगा दशमी के अवसर पर 25 मई से शुरू हुए इस अभियान के दौरान आदर्श अमृत सरोवर बागोड़ा पर श्रमदान रखा गया। जिला स्तरीय आयोजन में प्रभारी मंत्री के विश्नोई शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक मजबूत संकल्प है। अभियान के तहत जिले भर में रोजाना श्रमदान और जागरूकता गतिविधियों के साथ जल संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही है। हरियालो राजस्थान के तहत जिले में इस सीजन में 19 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। जिला प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने ये जानकारी देते हुए आम जन से अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। श्री विश्नोई ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बागोड़ा स्थित खेतलाजी तालाब पर पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसी सिलसिले में बीते दिनों आहोर में संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। अभियान में पशुपालन विभाग की ओर से जिले की 308 गौशालाओं में स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। जिले के भेटाला में आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के तहत तंबाकू और नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। ग्रामीणों को तंबाकू और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। जालौर जिले में मतदाताओं द्वारा स्वगणना पोर्टल पर जनगणना जानकारी दर्ज की गई। 1 से 15 मई तक चले स्वगणना अभियान के तहत अब जनगणना कर्मी लोगों के घर घर पहुंचकर सूचना अपडेट कर रहे हैं। मोबाइल ऐप के जरिए आवासों की सूची, सुविधाओं, संपत्तियों और अन्य आवश्यक आंकड़े एकत्रित

करने के साथ ही मकान पर नंबर लिखने का काम किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय परिसर में पिछले दिनों एक दिवसीय प्लेसमेंट शिविर आयोजित किया गया। जिला प्रशासन और रोजगार विभाग की ओर से लगाए गए इस शिविर में 110 बेरोजगारों का चयन कर उन्हें लाभान्वित किया गया। जिले भर में इन दिनों सूरज अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। बढ़ते तापमान के साथ गर्मी के तीखे तेवर बने रहने से आमजन के साथ पशु पक्षी भी व्याकुल हो रहे हैं। अधिकतम तापमान के 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने से दिन के समय बाजार और सार्वजनिक स्थान सूने दिखाई दे रहे हैं। जालौर जिले की चिट्ठी में बस इतना ही। नमस्कार।

समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो भारतीय फौज जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर चलावण सारू तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल सवेरा 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका कर्मचारियां ने सरकार और जनता बीच खास कड़ी बताया। और प्रदेश माय आज दूजा दिन ही धूलो उड़बा सागे आंधी चाली सरहदी हलका माय रेत रात तूफान उस जिंदगी माथे असर पड़ियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो है कि भारत री फौज आला दर्जा री सावचेती राख रही है और जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर शुरू करण बाबत ही तैयार है। वे आज पुणे रा खड़कवासला री राष्ट्रीय रक्षा अकादमी माय 150वां बैच री पासिंग आउट परेड माय बोल रहा है। ए मौके जनरल द्विवेदी कहो के ऑपरेशन सिंदूर उकसावा रो जवाब सटीक और पक्का इरादा सागर देवण रा भारत रा बूता रो दर्शाव कीनो है। वे कहो के ओ अभियान हाल ही चाल रियो है। जनरल द्विवेदी पास आउट वेवन वाला कैडेटों व्यावसायिकता नेतृत्व और देश सेवा रा आला मानका ने बनाया रखन बाबत कहो। फौज रा मुखिया ई कोर्स ने पास करन वाली महिला कैडेटां री सराहना करता थका कहो के हिम्मत पक्का इरादा और फौजी बेहतरी बगैर लिंग भेद रो गुण है। अकादमी 353 कैडेट स्नातक री डिग्री हासिल कीनी। इस आगे दोस्ताना रिश्ता वाला देशां रा 21 कैडेटां ने ही डिग्री दी रीची। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेत बचाओ अभियान ने खेता किसाना और गांवा ने जोड़बा रो मोटो अभियान बनावण बाबत कहो है। श्री चौहान आज नई दिल्ली माय खेत बचाओ अभियान री तैयारियां रे बारे माय राखी जी मीटिंग माय बोल रहा है। वे कहो के ई अभियान रो मकसद खाद ने बुद्धिमानी काम लेवण किसाना ने मौसम उ जुड़ी जानकारियां और राय टेम सर देवण और न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां रो फायदो गांवा री जनता ताई सीधो पुगावणो है। खेत बचाओ अभियान 1-30 जून ताई आखा देश माय चलायो जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय काल समारा 11 बजे विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इनरो प्रसारण AIR न्यूज DD न्यूज प्रधानमंत्री रा दफ्तर सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल सागे न्यूज ऑन AIR ऐप माथे ही करियो चावेला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहो है कि देश माय चुनाव संविधान चुनावी कानून रे मुजब हर साफ कोई सागे कराया चावे है। वे आज नई दिल्ली माय निर्वाचन आयोग री नुमाइंदगी करण वाला वकीलां रा दूजा राष्ट्रीय सम्मेलन माय बोल रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहो के लोकसभा चुनाव रे दौरान साफ गोई जवाबदेही और निपक्ष तरीकाओं वोट देवण तय करण सारू करीब 1,08,00,000 सरकारी कर्मचारी तैनात करया जावे है।

एक जून नू काम करन लगेला विद्यार्थियां री परीक्षा री कॉपियां रा सत्यापन और उजू जंचावन री साफ प्रक्रिया तय करण सारू ओ पोर्टल शुरू करियो जा रहे है। जयपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रा तहत पात्र रेहड़ी पटरी वाला ने कर्ज मुहैया करावन सारू नगर निगम और एक गैर सरकारी बैंक कानियों मेलर एक जून नू खास शिविर लगाया जावेला।

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका माए काम करण वाला ने सरकारी योजनावां री जानकारी जनता ताई पुगावण रा काम माए खास कड़ी बताया है। वे आज जयपुर माए राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन रा महाधिवेशन माए बोल रहा है। मुख्यमंत्री कहो कि स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन री कामयाबी माई नगर पालिका कर्मचारियां रो खास काम रहो है। श्री शर्मा कहो कि स्वच्छ भारत अभियान देश माए साफ सफाई रा काम ने जनता रो आंदोलन बना दीनो है।
1: मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप वो कड़ी हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हमारी योजनाओं का लाभ भी मिले और हमारे माध्यम से कोई भी हमारा परिवार का भाई, कोई भी कर्मचारी अगर उसको किसी तरह की परेशानी हो तो उसका समाधान करने का काम भी आपका है। नगर पालिकाओं के कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, अग्निशमन कर्मचारी हो, जलापूर्ति कर्मचारी हो, ये दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहते हैं।
0: मुख्यमंत्री विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 रो संकल्प सांचो करण माए सगला री भागीदारी ने जरूरी बताई। कार्यक्रम माए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राज्य रा नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्राई मौजूद रहा। प्रदेश माए निवेश सारू राज निवेश पोर्टल माथे मिली 9000 अर्जियां मायों 6032 मंजूर कर ली रिची है। अर्जियां मंजूर करण रा काम माए जयपुर प्रदेश माए अव्वल रहो, जठे मिली करीब 2000 अर्जियां मायों 1332 ने मंजूरी दे रिची। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आ जानकारी दीनी। पुलिस मुख्यालय बेहतर काम करण वाला 123 अहलकारां और कर्मचारियां ने महानिदेशक पुलिस डिस्क और प्रशस्ति रोल ऊन नवाजन रो ऐलान की नो है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा री ओर निकाली जिया हुकम रा मुजब पुलिस रा अतिरिक्त महानिदेशक ऊ सिपाही लेवल ताई रा अहलकारां और कर्मचारियां रो मान करियो जावेला। नवाजी जावन वाला अहलकारां माए पुलिस री सिखावण देवण रो काम देख रहा अतिरिक्त

उमाव सागे भाग लीनो अर योग न रोजमर्रा री जिंदगी रो हिस्सो बनावन री सोगन लीनी। नागौर कन जोधपुर बीकानेर गेला मथ आज दोपहरा कार रे ट्रक री फेंट माया जावनो चार जना री मौत वेगी। पुलिस रे मुजब डूकोसी और राजूवास गांव बीचे व्या हादसा रे कारण कार में सवार दो महिलावां और एक बच्चा समेत चार जना री मौत वेगी। अरब मौसम प्रदेश रा पाकिस्तान री सरहदू लागियोड़ा और उत्तराद आतुणी हलका माए आज दोपहरा री पोर जोरदार रेतीलो तूफान आयो। श्रीगंगानगर बीकानेर चूरू हनुमानगढ़ और सीकर जिला में आए जोरदार आंधियों दिन में आई अंधारों महसूस वेमण लाग्यो। रेत रात तूफान री शुरुआत हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलाओं भी जो थोड़ी देर में आई आर एस आर रा मोटा हल्का माए पसर कियो। माणा चूरू

0: खबरनवीस बतायो कि रेतरा तूफान जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो
1: चूरू में आज अचानक मौसम में बदलाव आया है दोपहर पहले यहां तेज धूप और गर्मी का असर रहा जिससे आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और तेज अंधड़ आया तेज रफ्तार से हवाएं चली जिससे लोगों के टिन सेट उड़ गए हैं तेज अंधड़ से पेड़ पौधे भी काफी टूटकर नीचे गिर गए गांवों में अच्छी बारिश हुई है साथ ही चूरू में चने के आकार के ओले गिरे बारिश होने से लोगों को गर्मी में थोड़ी राहत मिली है वहीं तापमान में थोड़ी गिरावट आई है आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं श्रवण शर्मा आकाशवाणी समाचार चूरू
0: कई थोड़ा 60-80 किलोमीटर प्रति घंटा रे रफ्तार रो बायरो बाजो जिनो धुलारो गुबार छा जावन रे कारण दूर ताई नजर नी आयो इन दौरान लोगा ना दिन मा ए गाड़ियां ने लाइटा चासनी पड़ी जोरदार बायरो बाजनो कई छोड़ा रूखड़ा टूट गया और होल्डिंग्स उखड़ गया और बिजली री पूर्ति माथे असर पड़ियो राजधानी जयपुर मा ए सिंजानी पोर बादला मंडी गया धूलो उड्यो आंधी चाली और कठा कठा बारिश हुई आंधी बारिश हूं पारो 10 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो है मौसम केंद्र जयपुर प्रदेश माए आज करीब 30 जिला सारो आंधी बारिश सागे कठे कठे ओला पड़ बारा आसार चताया है केंद्र आंधी चालन जोरदार बायरो बाजण और बिजली चमकण री भगत सावचेती राखण सारो कहो है मौसम केंद्र रे मुजब आंधी बारिश रो सिलसिलो आवता 3-4 दिन ताई चालतो रहवण री संभावना है श्री गंगानगर जिला रा सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावन रा काम रो पहलो दौर पूरो फेक्यो है उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन बतायो के अमृत भारत स्टेशन योजना रा तहत स्टेशन भवन ने बेहतर बनावन स्टेशन माय दाखिल वेवन और बाहर जावन रा न्यारा न्यारा दरूजा बनावन गाड़ियां उभी करण री नूवी व्यवस्था विकसित करण समेत कई खास काम करीचिया जा माथे करीब 20 करोड़ रुपया रो खर्चो आयो इस आगे वठे करीब 10 करोड़ रुपया रा खर्चो 12 मीटर चौड़ो पैदल पुल बनायो जा रियो है और सूरज री रोशनी 50 किलोवाट बिजली पैदा करण री मशीनाई लगाई जा रही है आखिर माय खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो भारत री फौज जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर चलावन सारू तैयार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल समारा 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगरपालिका कर्मचारियों ने सरकार और जनता बीच खास कड़ी बताया और प्रदेश माय आज दूजा दिन ही धूलो उड़बा सागे आंधी चाली सरहदी हलका माय रेत रा तूफान जिंदगी माथे असर पड़ियो इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो नमस्कार
2: FM 107.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं शाम के 7 बज चुके हैं आइए सुनते हैं किसान भाई बहनों के साथ उनका कार्यक्रम किसान वाणी
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम किसानवाणी सुन रहे हैं सगले भाई बहना ने टाबरा ने बड़े बुजुर्ग ने भाई अयुब खान गौड़
3: और पंकज भाई का न्यू मोकला मोकला
2: राम राम पंकज भाई राम राम
3: राम राम अयुब भाई राम राम
2: पंकज भाई आथन को बखत है आथन के बखत जब चौपाल जचे तो अपना दूर दराज गाँव और डाणी में बैठा ही तड़ू उड़ीक रहे के आज की किसानवाणी के मायने अपना ने कौन सी है जी की कृषि की सलाह दी जाएगी और कौन सी अपने पशुधन के बारे में जानकारी है बा देव का तो पंकज भाई अपने आज की चौपाल है जी की जचगी यार अब सलाह की बात आवे तो अपने पारंपरिक खेती है पंकज भाई बात धीरे धीरे आप एकदम भूल गया और आज आप जो खेती बाड़ी को काम कर रहा या पशुपालन को काम कर रहा तो सारा को सारो जिको अपनो जिको पारंपरिक तरीके ना आपा भूल के वैज्ञानिक पद्धति की तरफ आपा खेती बाड़ी करे लाग्या निश्चित रूप से पंकज भाई वैज्ञानिक तौर तरीको अपना की जब आपा खेती बाड़ी करा तो उत्पादन का मायना आपा ने है जिकी बढ़िया जो मुनाफो है वो मिलियो है और पशुआ की आपा बात करा तो पशुआ का मायने भी देखो नस्ल सुधार को जो काम चालियो है वो देखो आज आपने यूं देखने में भी लगे कभी पशुओं को नस्ल सुधार हो यार उत्पादन वर्दी है जी हाँ जी आपने देश की जनसंख्या बढ़ी भैया अन्न की ज्यादा जरूरत पड़ी और जी हाँ जी आबादी बढ़ी बढ़ती आबादी के सागा अपना जी का खेत का जोत छोटा हो गया अब छोटा जब खेत का जोत छोटा हो गया तो उत्पादन में भी देखो पंकज भाई कुछ न कुछ है जी की कमी है बा आवे तो फिर बखत के सागा आपा चालनो शुरू करियो कभी आज आपा ने जरूरत है वैज्ञानिक तौर तरीका अपना की खेती बाड़ी करने का तो शुरुआत आपा मौसम से करा कभी मौसम क्या को है
3: भाई मौसम आधारित है कि आपनी खेती है बिन आपा के यहाँ पेश चढ़ावा के यहाँ पूरी करा
2: तो मौसम को आपा सब पहला देखो मौसम को आजकल पढ़े लिखे हाँ एंड्रॉइड फोन अपना है कि नहीं अखबार भी पढ़ा आपा समाचार में भी सुना कभी मौसम का पूर्वानुमान अपन लगाना बहुत ही जरूरी है जब आपा मौसम को पूर्वानुमान लगा लेगा तो आपा एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति है वह अपना ली अब बात आवे है कि अब बीज है बुआई है बीज से लेकर बुआई तक और कटाई तक
3: भाई कहने को मतलब बाणे लेके जब ताई आपा घरा अपना ओबरी कोठा है नहीं बदला जब ताई पूरी जिम्मेदारी की बात करा पूरी खेती की बात करा जकी आपा ढाई मना तीन मना चार मना जको पसीनो बुआवा जकी रामायण करा या लड़दड़िया लाग्या रहा दिन रात एक किलो करेड़ा रखा भी को फल मिले जब तक की बात करा
2: जब तक की आपा बात करा तो बैंक को देखो आपा ने पूरा फायदा मिले कभी आज जब आप बिजाई करने से पहला या बिजाई कर ली या बिजाई कटाई के बाद में मौसम का आपा सागर रहवा तो आपा अपने मौसम जब खराब हो रहे तो आपा अपनी काटेड़ी फसल है या बहुत ज्यादा बिरखा होगी तो अपने खेत की या इनकी स्थिति हो बीज को पानी भेड़ो है वो नाके चलो जावे तो वो अपन पतो लाग जाए अभी के बाद में आप मानसून पर बात करा तो मानसून की जिकी अपने खेती बाड़ी हो खरीफ की हो और मुख्य रूप से आप बाजरो ग्वार मूंग मोट और तिल को उत्पादन है वो लेवा तो एक महीना आप सही समय को ऊपर आप सही स्थिति को इंतजार करके बारिश की चेतावनी ने मद्देनजर रख के आप बिजाई है बात कर लेवा तो आप अपनी खरीफ की फसल ने मौसम की मार हुए जी का बचा सका जब मौसम की मार से आप अपनी फसल ने बचा ली तो पंकज भाई निश्चित रूप से अपना उत्पादन है वो बढ़ के मिले वो
3: तई बात है तई बात है एक खास बात है ने बा एक सागे सागे जकी सरकारी योजना है ने

0: अब जे मान लो आजकल के मौसम की आप बात करा, ई मौसम को कोई अंदाज कौन लाग रहे हो, ठीक है ना? तो इससे मौसम के मायने फसल जकी है बिन बचा के रखना अपनी जिम्मेदारी है। तो फसल जकी अपनी भी फसल को आप बीमो जरूर करावा, ठीक है ना?
1: अभी वैज्ञानिक तरीको है।
0: हाँ बिल्कुल वैज्ञानिक तरीको ही है, इसमें कोई दो राय को नहीं। खेती बाड़ी जकी ना यू भाई बात दिनों दिन महंगी होती जा रही है, और जको नुकसान हो है, भी नुकसान की पूर्ति से बड़ो चैलेंज हो टाइम। आप कोई काम करा मान लो अर गैल ने पीठ थप थप आके एक जनो खड़े हो वो कह के फायदो तेरो नुकसान मेरो, नुकसान की मेरी जवाबदारी है तू तो कर। तो भी के याव बढ़ जा हिम्मत हो जा। तो एज की बीमा ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक तरह को ओ पुश करने को एक तरीको है कि अगर फसल का मां नुकसान हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो थाने बीमा के मायने को कवरेज मिले। और जोरदार बात आए कि काटेडी खेत के मां पड़ी जकी फसल है काटने के 15 दिन ताई भी बीमा में कवर हो रही है। तो अपा सरकारी योजना खास तौर पर बीमा योजना को लाभ जको वो भी जरूर ले।
1: बिल्कुल, देखो पंकज भाई लाड़ा बरसा की आप बात करा तो अपना किसान भाई है, चाहे खरीफ की फसल हो चाहे रबी की फसल हो, वो बीमो है वो लगभग अपना किसान भाई करावे लगा। और आ बहुत ही बढ़िया इस योजना है अपने किसाना के लिए। तो पंकज भाई पुराने जमाने में आप थोड़ा सा चला तो जब काल पड़ जाए तो अपनो है जिको किसान की कमर टूटती, अतिवृष्टि हो जाती तो किसान मरतो, ओलावृष्टि हो जाती तो बने नुकसान झेलना पड़तो। तो सरकार आज आ सोचन लगी कि भाई हर बार किसान है वो की कमर टूटती जा रही है, क्यों ने आप एक फसल बीमा योजना शुरू करा। और फसल बीमा योजना शुरू होने के बाद में अगर आप अपनी फसल को बीमो करवा लियो और कोई कारणवश अपनी फसल बर्बाद होगी तो भी जिसको नुकसान हुए भी नुकसान की भरपाई है वह बीमा कंपनी करे। जैसे क्या हुआ कि किसान की जिसकी आर्थिक स्थिति है वह मजबूत हो रहे और अगली बिजाई बहुत समय पर करे और थोड़ो सो जो नुकसान हो है भी की भरपाई है वो बीमो कर दे। तो आप बीमा योजना अपने जरूर है बा करवानी है।
0: कार्यक्रम में बखत है हेताड़ों को मनोरंजन करवाने को करवाओ, हेताड़ों को मनोरंजन सुनावा एक मीठी सी लोक रचना।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की।
1: अभी आप संदेश सुने और संदेश ऊपरली अशोक जोरी साथियों की आवाज में गाइडी अमीठी सी लोक रचना सुनी और अयुब भाई आप मौसम आधारित जकी कृषि सलाह है बीमा की जकी बात है अपने किसान भाई सागे बतलाई सागे सागे अपना जका पशु पालक भाई है बहु भी एक आप बतराण करना चाहवा के पशुधन जको ने बिक मायने अच्छी जकी नस्ल ने बिको हमेशा ही बड़ो योगदान रहो है।
2: बिल्कुल
1: आप जका पशु पाला हां वो पशु की नस्ल आपनो जको भौगोलिक एरियो है बिके अनुसार और अच्छी जकी नस्ल होएगी वह किसान के लिए एक अतिरिक्त आय को जरियो है। भाई आपनी जकी आय है बिका दो जरिया है, एक तो आपनी खेती,
2: दूसरा पशुपालन।
1: पशुपालन तो पशुपालन के मायने जको पशु है बिकी नस्ल जकी है बा मौसम के हिसाब भी जको एरियो है बिको मायने मतलब भी मौसम ने खेजा। अब जे आपने एरिया की आप बात करा तो आपने के तावड़ियो मोकलो पड़े समझ गया और गर्मी के मा सुको मौसम रहे जे शुष्क आप बोल दे ना सुको मौसम और गर्मी जोर की। अब ई जोर के तावड़ा के मा पशु जकाई आप देखा ना अलग उठे तो जका पशु परंपरागत रूप आपनी ई एरिया के मा आराम रम जा आपने मौसम ने एकदम खेजा और जकांगी नस्ल भी बढ़िया हुए वो पशु जको अगर आप पालेडो राख्या तो बिक मायनू किसान

0: आज बढ़नी तय है भाई पशु ने जे आप दूध भी पाला घी भी पाला मांस भी पाला तो एज की चीजा ही आ चीजा ने वे पशु बनाएडा राखे जे मान लियो गाय की बात करा या भैंस की बात करा तो जे साहीवाल है थार पारकर है या मुर्रा है एज की नस्ल ने ए देसी और स्थानीय नस्ल के मुकाबले उन्नत नस्ल है ए अपन दूध को घी को मांस को ज्यादा उत्पादन दे सके थार पार कर जकी नस्ल बयाल की नस्ल है जकी तकड़ी गर्मी के मायने जोर को सुको मौसम जया गर्मी है बिगमन आराम आसानी रह सके और जका पशुपालक भाई है बन बढ़िया दूध दे सके बन बढ़िया पैदावार दे सके बछड़ा बछड़ियां बेचा दे सके अगली नस्ल जकी बा अच्छी दे सके
1: बिल्कुल। देखो पंकज भाई आपा अच्छी नस्ल के पशु की आपा जब बात चल रही है तो आप अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने पशुपालक किसान बहन कहना चाहूंगा कि अपनी सदिया की परंपरा रही है पशुपालन और खेती बाड़ी और सदिया की परंपरा ने देखो आप निभावा अच्छी नस्ल के पशु के सागर वैज्ञानिक जमानो है और वैज्ञानिक जमाने में देखो अपना पशु चिकित्सक है अपने स्थानीय जी का पशु है जहाँ अपने देसी गाय की आप बात करा तो देसी गाय ने भी वह हाइब्रिड पद्धति में है जिका परिवर्तित करेला गया और नस्ल सुधार को बड़ो कार्यक्रम है ये नस्ल सुधार कार्यक्रम में अपना जिका पशुपालक किसान भाई है मैं दो तरह का फायदा हो जाएगा एक तो फसल की नस्ल सुधर गई दूसरा वो फायदा हो गया आप सर्दी और गर्मी की जब आप चूरू की बात करा तो गर्मी भी खूब पड़े सर्दी भी है खूब पड़े तो वो पशु अपने मौसम ने झेल ले हुए नस्ल सुधार के बाद में जो उत्पन्न जो भी आप आपने जो पशु आए है वो भी ने मौसम ने झेल ले
0: हुए
1: वो मौसम ने झेल ले और देखो अपना पशुपालक भी अपने पशुओं के प्रति जागरूक हो गया पंकज भाई बाकी रहने की व्यवस्था बाकी खाने की व्यवस्था थोड़ी सी ढंग करे ला गया तो पशु है तो दो फायदा हो गया एक तो नस्ल सुधार के माध्यम से अपने पशुओं की नस्ल सुधर की दूसरों चारा और बांटे की बात करा भी ठाण की आप बात करा तो गर्मी से बचाव का तरीका अपना पशुपालक किसान भाई है चाहे वह घर में राख रखा हो चाहे आपकी डाणी में राख रखा हो चाहे वह डेयरी कर रखी हो तो बाकी व्यवस्था है बट गर्मिया से तो कुछ झूपड़ी छान है बाकी मायने पंखा की व्यवस्था कर दी और सर्दिया से उतरा दी हवा ने रोकने के लिए जिकी व्यवस्था है बा कर दी तो दो तरह को अपना पशु पालक ने फायदा हो गयो कि एक तो नस्ल सुधार को अच्छो पशु मिल गयो और मौसम की मार से अपना पशु है वो बचो रहे
0: भाई। देखो आप अच्छी नस्ल के पशुओं के फायदे की जहाँ बात करा तो एक तो एक मायने के पैदावार बढ़िया हुआ अच्छी हो अच्छी नस्ल को पशु है जहाँ आप बात करी नस्ल की भी बात करी चाहे साहीवाल हो राठी हो थार पार करो है मुर्रा हो दूध और मांस दोनों ज्यादा दी एक नंबर बात दो नंबर बात यो पशुपालक भाई जको ने बिके जुड़गस जके बस आउल वापर आवे आगे बात करा तो अच्छी नस्ल का जका पशु है बाक मायने रोग जका इने बे भी कम लागे दूसरी बात जे रोग लाग भी जा तो बाकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जकी होवा मजबूत होवे तो बियो के होवे के जो को किसान भाई है बिक आर्थिक नुकसान कम हो पशु अगर बीमार हो बार बार मापन पशु चिकित्सक लेनो पड़े बिकन पशु ने ले जानो पड़े जचानो पड़े ए सब चीज की है ए अच्छी नस्ल का पशु का मायन करने की जरूरत को नहीं वक्त पर आप टीका लगा लिया
1: संक्रामक
0: रोग बंचे डो रहे ठीक है ना तो ब्यू मई के जो को किसान भाई है बिक आर्थिक फायदा हो रोग बचाव जो है ना वो मौसम की गर्मी सर्दी और जहां बरसात आपने तीन मौसम ही होवे ए पलटेंगे जब पशु के मायने रोग आने की जकी संभावना वा थोड़ी
1: बढ़ जावे
0: ज्यादा होवे तो टिको लगा लिया पशु चिकित्सक की सलाह ले लिया और पहली वांग मायने की है कि ए मजबूत नस्ल जकी है बा मजबूत होने के कारण अच्छी नस्ल होने के कारण की एंटीबॉडी जकी बा मजबूत होवे तो यो अतिरिक्त जको खर्चो लागणो है भी में कमी आवे तो भी पशुपालक भाई की आमदनी बढ़े इके अलावा कम खानो और बोलो देनो मतलब जका उन्नत नस्ल का पशु होने बाकी पाचन क्षमता जकी ने बहुत
1: बहुत बढ़िया होवे
0: मजबूत होवे तो बे के करे के कम दाणे के मायने कम चारे के मायने कम पानी के मायने ने आपके शरीर ने आपके ड्यूल ने सावल जचा के रखे खानो जको है वो पचा ले तो ब्यू के रस बने और किस जको किसान है बिना पशु पोषण के लिए जो अतिरिक्त खर्च करना पड़े ने वो ए पशु आपके डील ने आपके वजन ने बढ़ा के जचा ली तो ब्यू खर्चे में कमी आवे इके अलावा जकी आने वाली पीढ़ी है बिकमाइन बहुत

0: जो सुधार हो जे अच्छी नस्ल का चुनाव करा तो एक मंजे मान लो सांड है सांड है आग आन आल टाइम अच्छी बछड़ी या बछड़ा तैयार करने थे बताया हाइब्रिड नस्ल है आजकल तो के सिमोन होवे इन आप पहले प्रिजर्वेटिव करके रख लिया तो वो जो सिमोन है वो आन आली जकी नस्ल है बिकी सुधार के मायने एक महत्वपूर्ण कदम है यो अपन जकी नस्ल को बछड़ो या बछड़ी ची आप भी नस्ल की पैदावार जकी बा ले सका बा नस्ल जकी है बा मजबूत होवे वातावरण के अनुकूल होवे और फायदो देने वाली होवे और एक चीज की है बा के एक मन बापरत भी सावलो है बढ़िया नस्ल को जको पशु होगो ने बिके दूध की बिके घी की बिके मांस की जकी बाजार के में सदा ही मांग बनेड़ी रखी और जे ई पशु ना अपन बेचन भी चाल से अच्छी नस्ल का पशु बेचन भी जावांगा तो बिक्री के टाइम भी 2 रुपया अपन
1: सावल ले लेगा बिल्कुल
0: तो कहने को मतलब अच्छी नस्ल को जको पशु है वो किसान भाई के लिए घणो जरूरी है और नस्ल को चुनाव करते समय आप ई बात को
1: ध्यान रखा और देखो ध्यान तो आप अपने किसाना को भी रखेगा क्योंकि अब गीत संगीत की पंकज भाई बात चल है तो सुनावा एक बनाने मीठी सी लोक रचना

0: चलता अपना जखाहे तालू अपन काल के मौसम की जानकारी दे दिया। काल 31 तारीख ने दिन को जो को तापमान है वो बत्तो 38 डिग्री और कम 27 डिग्री होने को अनुमान है। ठीक है ना, दिन के मायने जकी हवा चलेगी भी हवा के मायने जकी नमी है आद्रता जकीन बोला बस 37% तक रहने की संभावना है। हवा की जगह तेजी है बस 16 किलोमीटर घंटा रे हिसाब में बढ़ने की तैयारी है वो अनुमान है। इके अलावा जे आप बात करा दिन उगण की तो दिन के 5:34 पर दिन उगेगो और संध्या दिन छिपे रो वक्त जो है वो है 7:22 को 7:22 पर दिन छिपेगो। आ है सूरज के उगने की बात और जे चांद के उगने की आप बात करा तो चांद रात ने 7:41 पर उगेगो और दिन उगाली के 5:50 पर सूरज वो चांद छिप जाएगो। मौसम को वो अनुमान है।
1: देखो पंकज भाई जब मौसम की बात चल रही है आपा ठहरे किसान किसान है जिको मौसम से जुड़ेड़ो रहे और आपा चलता चलता काल का कार्यक्रम भी अपने तालवान बता देवा कभी काल को जिको अपनो कार्यक्रम होगो खेती और गृहस्थी 7 बजे से लेके 8 बजे तक और बिग मायने चर्चा रहेगी मर्दा में जिप्सम को उपयोग और सागा होगा लोकगीत और लोक संगीत और फिर एक चर्चा होगी खेती किसानी और संचार क्रांति और फिर होगा गीत संगीत और फिर देखो अपने राजस्थान की सांगरी और कैर की जब आप बात करा तो इप भी है जी की चर्चा होगी तो बातचीत तो पंकज भाई आप और भी करना चाह रहे थे अपने ताड़वा से अपना अपन बखत आगे जाए की जाने की अनुमति है वो नहीं दे रहे तो आज को कार्यक्रम किसान वाणी बस 28 तक अयुब खान गोड
0: और पंकज भाई ने जो सीख करा राम राम।
2: कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाई बहनों के साथ उनका कार्यक्रम किसान वाणी FM 110.7 मेगाहर्ट्ज प्रामा आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। पहले आपको सुनवा रहे हैं।

सेवा मिश्रा और साथियों के गाए इस लोक रचना के साथ ही आज का राजस्थानी लोक संगीत यहीं संपन्न होता है। रात्रि के 8 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में बाबू फिल्म के इस गीत को। शब्द लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है राजेश रोशन का।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: आपको सुनवा रहे हैं बंदिश फिल्म के इस गीत को किशोर कुमार के साथ आशा भोसले की आवाज में। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और शब्द लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत, आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में अभिनेत्री फिल्म के इस गीत को। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और शब्द रचना है मजरू सुल्तानपुरी की।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: आपको सुनवा रहे हैं गुलजार के लिखे और खय्याम के द्वारा संगीतबद्ध किए हुए आशा

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के साथ नितिन मुकेश की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ और संतोष आनंद द्वारा लिखा हुआ क्रांति फिल्म के इस

हेमलता के गाए सुनैना फिल्म के संगीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलजस्ता यहीं संपन्न होता है। रात्रि के 8:45 होने को हमसे कुछ देर में आप सुनेंगे पहले समाचार संध्या, और रात्रि 9 बजे आप सुन पाएंगे न्यूज।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को

ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे। और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

राजेंद्र सरनौत के गाए इस लोक भजन के साथ ही आज का राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम युवा भारती। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम। और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मारतंड ने बोया, वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में, उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने

0: देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया, और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मारतंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधा वर्षन, या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको पयामे आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की, पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे, और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30-35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा ये मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता, जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई वो है विकास पत्रकारिता, विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना, और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आपको कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
1: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ।

0: टेलीविज़न कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं, लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहाँ अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थीं, बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया। और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहाँ विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं, लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है, और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है, और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रेवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाए तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स, श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
2: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब हम एक AI और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ड्राइविंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
3: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है, आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है, आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है, तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
4: सौरभ, आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
2: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला है, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस।
4: अच्छा।
2: क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कंटेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रैवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रैवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रैवल किया। एक हफ्ता जब हमने ट्रैवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ्स हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम।
4: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहाँ पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए? और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
2: हम लोगों का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से। देखिए, हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
4: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
3: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग। पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता, तो

0: एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम. जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई, फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है.
1: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम से सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं, जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स?
0: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइबर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स है.
2: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है. जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं. कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
0: लोपरगामिनी.
2: हाँ, उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या?
0: इंस्पिरेशन एक तो देखो, हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है. हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें. हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ कुछ वर्ड्स, जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है, तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती. तो हम ना कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं, क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी, और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है. बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें.
3: मैं मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था. हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है. जब हम वहाँ पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा. तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा, और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं.
2: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी जिसमें आपने 5 मिनट का चैलेंज किया था, आपने पूरा इंडिया घूमा, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, तो हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो.
0: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया. और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है.
1: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
0: बहुत ही मजेदार होता है. हाँ,
1: एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती हैं, लाइक ट्राइपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
3: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवर थिंक करते हैं चीजों को. हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था, उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ. उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी. मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना, एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, आप जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक. आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है, या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है. तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो ही इस्तेमाल करना चाहिए. पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमराज खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है. अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ तो मेरे लिए आसान नहीं है. तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप, और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
1: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज, मतलब जैसे ट्राइपॉड या
3: तरह की चीजें, यस यस, जितना छोटा हो सके, मतलब
0: कॉम्पैक्ट रखो.
3: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है.
1: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है, फॉलोअर्स और सक्सेस?
0: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स. हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है. हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो इस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके, और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं. आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें जो आइसक्रीम खाई थी बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए. फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है. बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं.
3: आपके पास जो है जैसा है वहाँ से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट, एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो.
1: श्वेता और सौरभ की बातें सुन

0: देखकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है। वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, न उम्र की, न दूरी की, न परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: जी धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्वरोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
0: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह की कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद, जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मींस बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है, खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटे की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है, तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं, उसपे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कॉम्पोनेंट है।
0: जी,
1: तो अगर आप सामान्य बीए, बीकॉम, बीएससी भी कर रहे हैं, तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहे। ऐसे ही जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहाँ पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
0: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से,
1: जी,
0: वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, अगर इग्नू की बात करें?
1: जी देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है। कोई माइग्रेशन, कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इनहेंस करना है, आप विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है। सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे, और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरिंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों किसान
1: has dedicated herself to the pursuit of notes and thoroughly absorbed the rich tradition of classical singing. Her voice has been beautifully nurtured under the guidance of legendary gurus, including Pandit Ajay Phulankar.
2: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
1: She has graced prestigious music festivals like the Tanzin Samarov and Ustad Amir Khan Samarov, leaving an indelible mark with her singing from the Prayag Mahakumbh to the Nehru Center in London.
2: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
1: Honored with several accolades, including the Kalashri and Mohammad Rafi Awards, her performances are not only technically flawless, but also deeply reflect the soul of Indian classical music.
2: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हैं राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्यलय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो ना जियरा मोरा, और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानू ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: टू बिगिन हर रेसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे। This is followed by a madhyalay composition set to teen taal with the lyrics Mano na jiyera mora. She concludes this rag with a drut composition set to ek taal with the lyrics Mano na hi tumri baat. Accompanying her on the tabla is Gandhar Rajhans and on the harmonium is Pramod Borgaonkar.

0: जीथा विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही है राग रागेश्री, त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना की बोल है साजन बिन सुनी एरी आली, और द्रुत एक ताल में निबद्ध बंदिश के बोल है राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्य लय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुखाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिस्निंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुखाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राजहंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।
2: अभी आप सुन रहे थे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम FM 110.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

FM 101.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारी दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नेता डीके शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।